0: क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: Akashwani at 90.
1: लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जयप्रकाश शर्मा के गाए लोकगीत। इनके स्वर में अब सुनते हैं एक मनोन गीत।

लोकरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जयप्रकाश शर्मा को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, कृपया जुड़े रहें आकाशवाणी भागलपुर के साथ।

AIR at 90. पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं रूपक, समय की धारा पर आकाशवाणी। लेखक ओम प्रकाश सिन्हा और प्रस्तुत करता है सुधांशु कुमार।

0: जून 1923 में पहली बार वायु तरंगों पर नर्तन करती हुई एक छोटे से डब्बे से निकलने वाली सुमधुर आवाज ने एक जादुई दुनिया बना दी। ये करिश्मा था रेडियो क्लब बॉम्बे का।
1: 1923 के ही नवंबर में कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हो गई। इन दोनों क्लबों के लिए ट्रांसमीटर लोन पर दिया था मार्कोनी कंपनी ने।
0: सीवी कृष्णमूर्ति शेट्टी के असेंबल्ड ट्रांसमीटर से 31 जुलाई 1924 को मद्रास क्लब की शुरुआत हुई।
1: शुरू में ये क्लब शाम के कुछ घंटे संगीत एवं वार्ता सुनवाते थे। लाइसेंस फी उनका संचालन स्रोत थी। शीघ्र ही धनाभाव के कारण इन्हें बंद करना पड़ा।
0: व्यवस्थित प्रसारण भारत में शुरू करने का श्रेय है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को।
1: 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे और फिर इसी वर्ष 26 अगस्त को कलकत्ता रेडियो हाउस की शुरुआत हुई।
0: प्रसारण की गुणवत्ता और लोकप्रियता पर कंपनी को गर्व था, लेकिन बढ़ते खर्च और आमदनी नगण्य के कारण कंपनी आर्थिक संकट से जूझ रही थी।
1: लगातार कंपनी भारत सरकार से इसे सीधे अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध कर रही थी।
0: अंततः भारत सरकार ने इसे 1 अप्रैल 1930 को अंगीकृत किया। ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से उद्योग एवं श्रम विभाग के अंतर्गत रखा गया।
1: एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी गठित की गई, जो भारतीय प्रसारण के प्रबंधन एवं विकास के संबंध में सलाह देती थी।
0: लेकिन भारत सरकार के लिए ये प्रसारण आर्थिक संकटों से जूझने का रहा। फलस्वरूप एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा 10 अक्टूबर 1931 को इसे बंद किए जाने की घोषणा की गई।
1: लेकिन तब तक रेडियो इतना लोकप्रिय हो चुका था कि भारत सरकार की इस घोषणा की प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई। तब सरकार ने इसे बढ़े हुए शुल्क के साथ पुनः शुरू किया 23 नवंबर 1931 से।
0: 1932 के आखिरी दौर में जब बीबीसी की अंपायर सर्विस शुरू हुई, तब रिसीविंग सेट 8,557 से बढ़कर 1933 के अंत तक 10,852 हो गए।
1: ये संख्या 1934 तक 16,000 हो गई, जब सरकार ने

0: दिल्ली में रेडियो स्टेशन खोलने की बात कही।
1: भारतीय प्रसारण के नए कंट्रोलर कियोनेल फिल्डेन और श्री किरके इंजीनियर, ये दोनों ही बीबीसी से आए थे। अतः उसी की तर्ज पर भारत में भी उन्होंने बृहत 4 मिलियन इन्वेस्टमेंट की अनुशंसा की।
0: इस समय जब भारतीय प्रसारण सेवा के निर्माण का कार्य चल रहा था, इसके समानांतर मार्कोनी कंपनी ने ग्रामीण प्रसारण शुरू किया। उत्तर पश्चिमी प्रांतों की सरकारों को ट्रांसमीटर और रिसीविंग सेट्स ऋण पर देकर
1: सितंबर 1935 में मैसूर रियासत में डॉक्टर गोपाल स्वामी, जो मैसूर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, ने अपने घर पर 30 वॉट का ट्रांसमीटर लगाया, जिसे बाद में 250 वॉट का शक्ति संपन्न किया गया।
0: ये प्रसारण आकाशवाणी के नाम से शुरू किया गया था। 1941 में जब तक मैसूर राज्य ने इसका अधिग्रहण नहीं कर लिया, तब तक ये जनता और मैसूर नगर निगम के सहयोग से चलाया गया।
1: भारत सरकार 1935 अधिनियम के अनुसार किसी भी राज्य और प्रांत को रेडियो स्टेशन की स्थापना का निषेध नहीं था।
0: 1 जनवरी 1936 को दिल्ली रेडियो स्टेशन की सेवा शुरू हुई। 18 अलीपुर रोड से टेम्पररी 20 किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर माल रोड पर लगाया गया था।
1: कंट्रोलर लियोनेल फिल्डेन ने तत्कालीन वायसराय लिन लिथगो से अनुरोध किया कि ऑल इंडिया रेडियो नाम अंगीकृत कर लिया जाए। बावजूद सचिवालय के विरोध के, इस नाम को 8 जून 1936 को अंगीकृत कर लिया गया।
0: बीबीसी से जुड़े एक अन्य इंजीनियर सिसिल गोएडर ने 19 अगस्त 1936 को चीफ इंजीनियर के रूप में ऑल इंडिया रेडियो को ज्वाइन किया।
1: 9 सितंबर 1937 को चार्ल्स बाम्स ने समाचार संपादक के रूप में ज्वाइन किया।
0: फिल्डेन जुलाई 1937 में इंग्लैंड में जब छुट्टियां बिता रहे थे, उस वक्त उन्होंने द टाइम्स में एक लेख लिखा।
2: ऑल इंडिया रेडियो भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मेरे नियंत्रण से बाहर। इसके साथ जो क्लर्क संस्कृति और मृतप्राय रूटीन सा कार्य हो रहा है, मौलिकता उत्सुकता जो कार्यक्रम की धड़कन है, इसकी वृद्धि करनी है।
0: आगे कहते हैं,
2: मैं विदेश प्रसारण का विकास देखूं या युद्ध की आशंका से प्रसारण की तैयारी, संसदीय प्रश्न या बढ़ती संख्या के कर्मचारियों का कल्याण, वेतन, उनकी निवास समस्याएं या रेडियो के प्रकाशन एवं मुद्रण को, नए स्टेशन के टेंडर, उनके लिए भूमि क्रय की कहां स्टूडियो होगा और कहां ट्रांसमीटर, ऑल इंडिया रेडियो का प्रांतीय सरकारों के साथ कैसा संबंध विकसित किया जाए, ये और ऐसे बहुत सारे प्रश्न मुझे डिस्क से बांधे रखते हैं।
1: ये कथन सुनकर सचमुच समझ में आता है कि स्थापना में कितनी मुश्किलें आई होंगी।
0: कंट्रोलर फिल्डेन और चीफ इंजीनियर गोएडर, ये दोनों ऑल इंडिया रेडियो नाम दिए जाने और शॉर्ट वेव के लिए हमेशा याद किए जाएंगे।
1: इनका सोचना था कि मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाना खर्चीला भी होगा और इसमें वक्त भी लंबा लगेगा। शॉर्ट वेव से शीघ्र ही हम पूरे देश को जोड़ सकेंगे।
0: 1939 में भारतीय प्रसारण की प्रगति की एक रिपोर्ट में कहा गया, ये बहुत जरूरी था कि पूरे भारत को शॉर्ट वेव सर्विस, जो द्वितीय श्रेणी की सेवा है, प्रथमतः उपलब्ध कराया जाए, जो प्रमुख केंद्रों की प्रथम श्रेणी की मीडियम वेव सेवा की पूरक सेवा है और जिसे भविष्य में फंड की उपलब्धता पर विस्तारित किया जाएगा।
1: फिर तो शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर देश में छा गए।
0: 4 फरवरी 1938, 10 किलोवाट शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर शुरू हुआ बॉम्बे में।
1: 2 अप्रैल 1938, 5 किलोवाट शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर लखनऊ में।
0: 16 जून 1938, 10 किलोवाट शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर शुरू हुआ मद्रास में।
1: 1 जून 1938 को 5 किलोवाट शॉर्ट वेव का ट्रांसमीटर शुरू हुआ दिल्ली में।
0: 16 अगस्त 1938, जगह कलकत्ता, 10 किलोवाट शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर शुरू किया गया।
1: 16 मई 1939 को 5 किलो

0: वार्ड शॉर्टवेव ट्रांसमीटर त्रिचनापल्ली में,
1: और ढाका में 16 दिसंबर 1939 को शुरू किया गया।
0: दिल्ली स्टेशन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1 अक्टूबर 1939

0: श्रुति को सही ढंग से उत्पन्न नहीं करते।
1: ये प्रतिबंध नवंबर 1972 में हटा दिया गया।
0: फिल्डन के उत्तराधिकारी हुए अहमद शाह बुखारी। वे ऑल इंडिया रेडियो के पहले महानिदेशक हुए।
1: 24 अक्टूबर 1941 को सूचना मंत्रालय का गठन हुआ और ऑल इंडिया रेडियो इसका एक भाग बना। फरवरी 1943 में ऑल इंडिया रेडियो संसद मार्ग के प्रसारण भवन में चला गया।
0: 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह ने ऐतिहासिक प्रसारण किया।
2: This is All India Radio announcing a broadcast by His Excellency Rear Admiral the Viscount Mountbatten of Burma, Viceroy and Governor General of India.
3: A statement will be read to you tonight giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. Since my arrival in India at the end of March, I have spent almost every day in consultation with as many of the leaders and representatives of as many communities and interests as possible. I wish to say how grateful I am for all the information and helpful advice they have given me. Nothing I have seen or heard in the past few weeks has shaken my firm opinion that with a reasonable measure of goodwill between the communities, a unified India would be by far the best solution of the problem. I have faith in the future of India and am proud to be with you all at this momentous time. May your decisions be wisely guided and may they be carried out in the peaceful and friendly spirit of the Gandhi Jinnah appeal.
1: 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को सत्ता के हस्तांतरण पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी का जीवंत प्रसारण किया, जो आज भी विशेष एवं ऐतिहासिक महत्व रखता है।
4: कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहाँ पहुँचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आज़ाद खुद मुख्तार असेंबली होगी।
0: नवंबर 1947 को बापू प्रसारण भवन नई दिल्ली आए थे और उन्होंने प्रसारण किया। उनकी ये अमूल्य और एकमात्र धरोहर आकाशवाणी ने बहुत संभाल कर रखी है।
5: मैं तो चला गया था वहाँ जो रेडियो घर है, तो मैं तो वो देख कर तो भड़क गया, लेकिन ये तो एक आलीशान चीज है, कैसी बनी है, हवा कैसे आती है, वो भी मुझको पता नहीं, अभी भी पता नहीं है। मैंने देखा, मैं तो एक संदूक में पेश गया हूँ, लेकिन संदूक तो नहीं थी, कोई भी हवा का प्रकाश का वहाँ इंतजाम तो है, लेकिन मैं किसको पूछूँ, क्यों पूछूँ, मेरे पास समय कहाँ है। मैं तो वहाँ गया।

0: एग्जाम तो है लेकिन मैं किसको पूछूं, क्यों पूछूं, मेरे पास समय कहाँ है। मैं तो वहाँ गया, एक जंगली प्राणी जाकर बैठ जाता है, पीछे उसको बोलना है। जिसको बोलता है उसको तो देखता भी नहीं है, वो तो बेचारे पड़े हैं दूर दूर।
1: बिरला भवन में होने वाली गांधी जी की प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग राज ब्रॉडकास्टिंग हाउस में की जाती थी।
2: 30 जनवरी 1948 की शाम रिकॉर्डिंग की सारी व्यवस्था स्टूडियो में की जा चुकी थी, पर गांधी जी को आने में देर हुई।
1: तभी एक, दो, तीन गोलियां दागने की आवाज आई और कोई चिल्लाया, गांधी जी को गोली मार दी गई। गांधी जी की मृत्यु की पुष्टि हुई।
2: शोक संगीत बजने लगा, समाचार में ऐलान किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत और दो दिन बाद सरोजनी नायडू ने शोक संदेश दिया।
1: बापू की शव यात्रा में जनता किस कदर उमड़ पड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता।

0: ट्रांसमीटर से युक्त था, अंग्रेजी में 10 घंटे से ज्यादा समय तक कमेंट्री की। यह प्रसारण अद्भुत था।
1: बंटवारे के बाद 9 में से 6 केंद्र भारत को मिले, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, लखनऊ और त्रिची।
0: शेष 3 लाहौर, पेशावर और ढाका पाकिस्तान को मिले।
1: रियासतों में स्थित कम पावर के रेडियो केंद्र मैसूर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, औरंगाबाद, बड़ौदा बाद में ऑल इंडिया रेडियो में शामिल हो गए और 1950 में इसके नेटवर्क का हिस्सा बन गए।
0: आजादी के पश्चात सूचना तंत्र के रूप में रेडियो एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर आया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 8 वर्षीय योजना रेडियो के विकास के लिए बनाई।
1: कश्मीर की तत्कालीन परिस्थितियों के कारण वहां तत्काल एक रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया और 1 दिसंबर 1947 को जम्मू रेडियो स्टेशन ने काम करना आरंभ कर दिया।
0: 1948 में पटना, कटक, गुवाहाटी, नागपुर, विजयवाड़ा, श्रीनगर और 1949 में इलाहाबाद, अहमदाबाद, जालंधर और 1950 में धारवाड़ और कोझीकोड़े रेडियो स्टेशन शुरू किए गए।
1: रियासती रेडियो स्टेशन 1950 में अंगीकृत किए गए। 1950 में AIR 11 भाषाओं में प्रति सप्ताह 116 घंटे का विदेश प्रसारण कर रहा था।
0: स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल 19 जुलाई 1948 में खोला गया। इसके प्रथम निदेशक डॉक्टर नारायण मेनन थे।
1: 15 सितंबर 1948 में सेंट्रल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ जो आज न्यूज सर्विस डिवीजन के रूप में जाना जाता है।
0: समय के धार पर आकाशवाणी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई, प्रसार भारती एक्ट 1997 की घोषणा।
1: ये वो कानून है जिसके द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रसारण में स्वायत्त अधिकार दिए जाने की बात कही गई है।
0: ये स्वायत्तता यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे के इतिहास पर एक संक्षिप्त दृष्टि जरूरी है।
1: आपातकाल के फौरन बाद सरकार के अधीन इन माध्यमों की स्वायत्तता पर गहन विचार हुआ। वीजी वर्गीज की अध्यक्षता में आकाश भारती 1978 एक रिपोर्ट तैयार हुई।
0: सरकार के बदलाव के साथ आकाश भारती रिपोर्ट पर समय की धूल की परतें जमती रहीं।
1: एक बार फिर समय ने करवट ली। प्रसार भारती विधान 1990 सामने आया जो 4 अध्यायों और 35 धाराओं उपधाराओं से संपन्न था, पर इसे लागू करने से पूर्व सत्ता में बदलाव आ गया।
0: इस बीच उपग्रह तकनीक ने क्षैतिजीय प्रसारण की तकनीक को चुनौती दी।
1: ये चुनौती हर स्तर पर थी। प्रसारण की गुणवत्ता, विशेषज्ञता, कुशलता और विश्व स्तर पर सूचनाओं के प्रेषण की क्षिप्रता, प्रसारण में बाजारवाद का आगमन हो चुका था।
0: पुरानी व्यवस्था पर अमल करता हुआ आकाशवाणी व्यवसायिक सूचना स्पर्धा में पिछड़ने लगा, कुछ आउटडेटेड सी स्थिति हो गई।
1: इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रसार भारती कानून 15 सितंबर 1997 को लाया गया।
0: इस घोषणा के साथ ही लगा प्रसारण के क्षेत्र में क्रांति हो गई है।
1: प्रसार भारती मूलतः भारतीय प्रसारण निगम है।
0: निगम के कार्यकलाप और प्रबंधन एक बोर्ड करेगा जिसमें 15 सदस्य होंगे।
1: बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है देश की एकता, अखंडता तथा संविधान में शामिल लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण रखना,
0: सार्वजनिक हित के सभी विषयों की सत्य, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जानकारी उचित तथा संतुलित रूप में देना तथा परस्पर विरोधी विचारों को अपनी राय या समर्थन के बिना प्रस्तुत करना, समाज और संस्कृति के उत्थान से जुड़े बहुत से बिंदुओं पर कार्यक्रम प्रसारित करना।
1: प्रसार भारती अपने प्रसारण दायित्वों के लिए भारतीय संसद के समक्ष उत्तरदायी होगी।
0: स्वायत्तता के साथ दायित्व भी बढ़ते हैं।
1: बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा के साथ लोक प्रसारक जन सेवा में रत प्रसार भारती व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जो हर कदम पर चुनौतियों से भरा है स्वयं को

0: अपडेट रखना, जनप्रिय रखना, बहु चैनलों की उपस्थिति में श्रोताओं को अपनी तरफ आकर्षित रखना आसान तो कतई नहीं है।
1: समूचे देश में हर स्तर पर आकाशवाणी का देशवासियों से सीधा संपर्क है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं जहां आकाशवाणी की आवाज न पहुंचती हो।
0: आज आकाशवाणी के विभिन्न केंद्र श्रोताओं की विभिन्न रुचियों के अनुसार उनसे जुड़े हैं।
1: देश में 218 प्राइमरी चैनल, 213 LRS, 37 विविध भारती केंद्र, 396 FM और 5 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं।
0: इसके अतिरिक्त कई ट्रांसमीटर रिले करने का काम कर रहे हैं। तकनीक संजाल की इस विशालता के कारण आकाशवाणी हर देशवासी से बिना भेदभाव के जुड़ा हुआ है।
1: बाजार में बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा है, पर आकाशवाणी प्रसारण की दुनिया में अचल खड़ा है।
0: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये वो बुनियादी बातें हैं जिन पर प्रसारण की बुनियाद है। इसके साथ मर्यादा और प्रामाणिकता ऐसे ठोस कारण हैं जिनके कारण लोगों का विश्वास आकाशवाणी में बरकरार है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के साथ
2: समय की धार पर आकाशवाणी का सफर जारी है।

0: लेखक ओम प्रकाश सिन्हा और प्रस्तुतकर्ता थे सुधांशु कुमार। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।

रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे पटना केंद्र से।

मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे से भरी जाने वाली बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक

0: जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को कराए जाने की घोषणा की है। विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। सऊदी अरब में वार्षिक हज में आज अराफात का दिन है। इसे हज का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर महीने जिलहिज्जा के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदान अराफात में जमा हैं और हज के विधि विधान पूरे कर रहे हैं। बिहार के 2,552 श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि इस साल हज करने वाले 1,75,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी
0: टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर हाट सहित कई स्थानों पर प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की बिक्री रोकने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित मछली जब्त की गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भेवड़ा ओवर ब्रिज पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 2,859 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखपुरा, अररिया समेत विभिन्न जिलों में बकरीद के पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि साल 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जिम्मेदारी संभालने के बाद मुल्क ने ज़बरदस्त खुद एतमादी और एक नए सकाफती निशात सानिया का तारीखी लम्हा देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नवीन ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की बेहतर हुक्मरानी और कौम अव्वल के जज्बे से मुतासिर गुज़श्ता 12 बरसों की मुद्दतकार को एक तारीखी सफ़र बताया। बीजेपी कौमी सदर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के बुनियादी मंत्र और अंत्योदय के आला उसूलों की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को एक नई सीमत अता की है। इलेक्शन कमीशन ने असेंबली कोटे से भरी जाने वाली बिहार कानून साज काउंसिल की खाली हुई 9 सीटों के इंतखाब के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। कमीशन की ऐलानिया के मुताबिक इन सीटों पर इंतखाब 18 जून को कराया जाएगा। उसी दिन शाम को वोटों की गिनती की जाएगी। तफसीली प्रोग्राम के मुताबिक

बताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की

0: आत्मात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
2: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: Will become even more important to the world.
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
2: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में

जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में

0: अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा

0: भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर 2:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

कुमार सानू और साधना सरगम को आपने सुना फिल्म दीवाना में। गीतकार समीर, संगीतकार थे नदीम श्रवण। हम हेरा ही प्यार के, आइए सुनते हैं इस फिल्म में अलका याग्निक और कुमार सानू को। समीर का गीत है, संगीतकार नदीम श्रवण।

कुमार सानू और आशा भोसले को आपने सुना फिल्म थी जान तेरे नाम। सईद राही का गीत, संगीतकार थे नदीम श्रवण। और इस बीच लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ खास संदेश।

0: Akashvani at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज।

दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू को। ये गीत हमने लिया है फिल्म कच्चे धागे से। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार हैं नुसरत फतेह अली खान।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति को आपने सुना फिल्म धनबान में। गीतकार समीर, संगीतकार थे नदीम श्रवण। और इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तरंग। आज कलाकार हैं चंदन दास।

0: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं तरंग कार्यक्रम। आज कलाकार हैं चंदन दास। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

AIR at 90. संदेशों के बाद फिर से शामिल होते हैं तरंग कार्यक्रम में। कलाकार हैं चंदन दास।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण दिल्ली केंद्र से। इसे आप सुन पाएंगे संध्या 5 बजे तक और फिर 5 बजे से पुनः आनंद लें आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रमों का।

0: पहुंचाने का काम भी किया
1: जी। और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉपक्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉपक्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
2: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था। लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
1: बिल्कुल। और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, CMO एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और CEO इंडिया अवार्ड 2016 में CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। चलिए छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
2: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: हाँ तो मंत्री, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंत्री ऐसी है नहीं,
0: कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो।

0: कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी तो क्यों आप उसके उस पर जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
1: बिल्कुल,
0: कि आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं

0: अच्छा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता, सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है।
1: जी, और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और बाकी भी जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी इस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता
1: है। सबसे पहले तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं
0: डिगा
1: नहीं सकते, जिसे कहते हैं।
0: अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला, इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए, जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करें कि नहीं, ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं, होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं, बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है, वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं, काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता की कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में

0: बना लिया बेचारे, इतना तीन नींबू लाए थे कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जन्माष्टमी में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल,
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में।
0: बहुत अच्छा माहौल होता था,
1: छुटपुट मजाक होती है,
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है।
1: सादगी से वो जन्माष्टमी होता था, दिखावटी दिखावटी नहीं होता।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे, और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना, वो लड़की वालों को करना पड़ता
1: है। बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गाँव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वही जलपान कराया जाता था, फिर गाँव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जन्माष्टमी कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल, आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहाँ लेके जाओ जन्माष्टमी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती है, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से
0: करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी। कोई नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जन्माष्टमी में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा। इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक

0: लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था, लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे,
0: जान होते थे, सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा, आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासी का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं, बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था, ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बराती हो तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग, बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था, छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था, जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं, यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत ही अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी दूर है, और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है, तो इस तरह की जो थोड़े बहुत
1: चूहलबाजी
0: टाइप की भी होती थी, तो बड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है,
1: हाँ,
0: तो
1: सब... अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई हैं।
0: बदल गई, होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: होटल में हो गई हैं, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे, तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं।
0: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद आते हैं।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर बाकी बात करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो मंजरी मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। हाँ। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासे यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी, एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए, रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए। हाँ। कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा है गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध है उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते थे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक
0: मजा था। वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा यह जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, तो वो तो किसी और का बगीचा है। हाँ हाँ। अब आम लगे हैं। हाँ। अब बराती लगे तोड़ने में। हाँ हाँ। अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। हाँ हाँ। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं। और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। जी।

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: शबू महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: आज वापस से ताजा हो गए। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

फिरोज खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको

Oh my God! बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज ए म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से।
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: अलग है, बांसुरी वादक
0: जी। बिल्कुल, बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों में वाद्यवृंद
1: बनाना वो भी उनके चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पदा नीजा नीदा पमा गरेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ,
0: ये मायने रखता
1: है। 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए जिनको, जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं, और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा निसा और SRGM, सारे
0: अच्छा, गामा पादा, दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे।
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे, तो वहां से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी,
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी?
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो

0: बदमाशी कर ही लेता आदमी।
1: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, हाँ। वो एक कुटुंबस।
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है।
1: हाँ।
0: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
1: जी।
0: तो और भी बदमाश
1: और भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
0: हम लोग करते थे बचपन में।
1: शर्मा रहे बता रहे थे।
0: हाँ, थोड़ा सा शर्मा हो गया, बट हाँ बदमाशी करते थे।
1: बगीचों से आम चुराए, चोरी
0: बहुत चुराए, बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं। और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है।
1: ओहो हो।
0: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
1: थोड़ा।
0: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी।
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
1: अरे बाप रे। फिर
0: पिताजी आए उन्होंने। अच्छा, एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों। रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
1: जी, जी, जी।
0: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था मुझे तो टीचर ने।
1: अच्छा।
0: इसको कर्मा बोलते।
1: वापस आ गया।
0: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
1: जी,
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
1: अच्छा।
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉय स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
1: जी,
0: बहुत स्ट्रिक्ट थे।
1: उस जमाना भी सख्ती का था,
0: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं।
1: कहीं और पहुंच गए।
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
1: जी,
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
1: तो क्या तो हाल होता।
0: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
1: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
0: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
1: जी,
0: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है। मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
1: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी,
0: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी। रंगी पर...

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं, उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा, उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई, और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी।
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं, और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी
1: है। क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी,
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे, वो हम

0: योगा 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है, ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी ला मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के,

0: तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है। क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की
0: चार
1: नींद,
0: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली,
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर, वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम, वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ।
1: जी जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30-8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज। वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, तो कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आ रही, नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो सारी रात जागना है।
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी

पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी दोस्त, सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है, इसी का कल

कुमार सानू को आप सुन रहे थे चाहत फिल्म में। गीतकार थे निदा फाजली और संगीतकार थे अनु मलिक। फिल्म संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। इसमें सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नज़र। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार, प्रियदर्शन। 7:10 पर हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में अजीत कुमार की वार्ता आप सुनेंगे स्वच्छ पर्यावरण नई पीढ़ी के लिए उपहार। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में अनुपमा कुमारी को आप सुन पाएंगे। 8 बजे रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे। 9:30 पर धनंजय मिश्र का लिखा नाटक सुनेंगे बदलता गांव। प्रस्तुतकर्ता होंगे अमित कुमार। 10 बजे अंगिका लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर भावों पर आधारित फिल्मी गीत सुनेंगे भावगीत कार्यक्रम में।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:48 पर। 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में कृषि आधारित वार्ता सुनेंगे। 6:05 पर चिंतन मनन का प्रसारण किया जाएगा। 6:10 पर भक्ति संगीत सुनेंगे वंदना कार्यक्रम में। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में डॉक्टर एस एन भौमिक की से सचिन कुमार की बातचीत आप सुन पाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी रोगों से बचाव विषय पर। 6:40 पर रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा। 7:00 से 7:55 तक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में सुगम संगीत सुनेंगे सीमा बनर्जी से। काव्यांजलि में कवि होंगे राजकुमार प्रसाद। इसके अलावा फिल्म संगीत, रेल सूचना, मौसम सूचना, अखबारों की सुर्खियां और कुछ बातें होंगी इतिहास की। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। कल के कार्यक्रमों में फिल्मी गीतों का समय याद रखेंगे। 9:06 पर, 10:00, 11:00, 11:30 पर एवं दोपहर 2:30 पर। 9:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में विजय कुमार दास को आप सुनेंगे। 10:30 पर लोकगीत सुनेंगे रेणु भारतीय से। 12:00 नारी लोक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे श्री पार्वती के। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे उमंग। 1:00 लोकरंग कार्यक्रम में लोकगीत सुनेंगे विवेकानंद भास्कर से। 1:30 पर घर आंगन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 3:00 रविंद्र संगीत सुनेंगे कणिका बनर्जी से। 3:20 पर देशभक्ति गीत सुन पाएंगे। 3:25 से शाम 5:00 तक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कल शाम 5 बजे युवा सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत करता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर फिल्म संगीत सुनेंगे। 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर विशेष भेंट वार्ता के अंतर्गत कुसुमाकर दुबे बातचीत करेंगे मृगेंद्र प्रसाद सिंह से समेकित कृषि के लाभ विषय पर। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में कुमारी ज्योति को आप सुन पाएंगे। रजनीगंधा कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनेंगे 8 बजे। 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे। 10 बजे फिल्मी गज़लों से आप महसूस होंगे। 10:30 पर आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों के गीत। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष एवं कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा एवं इनका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:06 प्रस्तुत है ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रस्तुत करता है अतुल

0: स्वागत है सभी श्रोता भाइयों बहनों का कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको लाखों का नमस्कार,
1: साथ में अकलू के भी नमस्कार। लाखों भाई आप लोग नमस्कार।
0: नमस्कार और हार्दिक स्वागत अकलू भाई। और सब सुनाइए, गांव घर में क्या कैसा हाल समाचार है?
1: की बताइयो, आज नहीं तो थोड़ा गड़बड़ समाचार छो। रात जो अंधर तूफान चक्रवात रूप में अले, तब जिसो सब जगह जिसो कतना ने पेड़ गिरी गले, कतना के घर जिसो छप्पर छौनी उड़ी गले, तेनाम थोड़ा सा दुख वाला बात छे। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं छे, कहना की है इसने तो ऐसा रहे छे। बस एकरा से सीख लेना छे आरु आगे बढ़ना छे।
0: बिल्कुल, देखिए कल की आंधी की बात यदि करते हैं तो उससे पहले हमारे अंग प्रदेश का जो मौसम है उसमें काफी चिलचिलाती गर्मी, लू का प्रकोप जारी था और दिन का तापमान 40 से 45 डिग्री के लगभग पहुंच जाता है। और कुछ ही दिनों में यह भीषण धूप और गर्मी से राहत की उम्मीद भी हालांकि दिखती है।
1: देखो लखो भाई, गर्मी छेबे कर ले, भी गर्मी के मौसम छे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन कि कोनो भी चीज जब अति हो जाए छे, ज्यादे हो जाए छे, तब वो खतरनाक हो जाए छे।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो ज्यादे गर्मी रह कि ज्यादे धूप रह कि ज्यादे वर्षा रह कि ज्यादे आंधी तूफान रह कि ज्यादे जाड़ा हो जाए, तो यह वास्ता जो जे भी छे अगर ज्यादे हो जाए छे तो वो थोड़ा खराब हो जाए। ये वास्ता सम संतुलन बनाए कर रखना चाहिए। और यही वास्ता हमें हमरा सनी का सब चीज में, चाहे जीवन के कोनो भी पड़ा हुआ दुख सुख रह, अच्छा खराब रह, या प्रकृति में जे भी छे ओकरा सब में संतुलन बैठावे की कोशिश हमरा सनी हमेशा करता रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखिए अकलू भाई, अभी का जो मौसम है इसके अनुसार तो हम कह सकते हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, छोटे छोटे जो एहतियात होते हैं उसको अवश्य बरतें,
1: सावधानी।
0: बिल्कुल, जैसे कि दोपहर के समय पहले तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, यदि ज्यादा जरूरत हो तो ही हम बाहर निकलें, लेकिन साथ में सूती कपड़ा जो है कि अपने सिर पे रखें और पानी भी पीते रहें, पानी का बोतल साथ में रखें और चेहरा जो है पूरा ढक के रखें। और छाता तो अवश्य लें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी भी पीते रहें, आपको प्यास लगी हो तो भी और ना लगी हो तो भी।
1: और सबसे बड़ा बात छे कि भूखलो पेट तो निकलने नहीं छे और भूखलो पेट रहना नहीं छे। है लोग सोचे छे कि हम बाहर निकलबे धूपो में जेबे तब न लू लगते, लेकिन तोरा जो है समझ में भी एता होता हूँ लाखो भाई कि घर बैठलो लू लागे छे।
0: बिल्कुल,
1: कहना की तकनी अगर भूखलो पेट रहलो, नहीं कुछ खेलो छे, पानियो नहीं पीलो छे और घर और बाहर एकदम चिलचिलाती जिसमें धूप छे और लू चली रहलो छे, तेना घर के अंदर भी बैठलो हुआ रहो तो लू लगता हूँ। तो यह सबसे बड़ा बात छे कि खेलो पीलो रह, भूखलो पेट नहीं रहो, पानी पीता रहो चाहे जहां भी रहो।
0: और इसके लिए हमें दूध दही छाछ नारियल पानी खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज जो भी मिलता है उसको अपने आहार में शामिल करें।
1: प्रकृति ने यही वास्ता है इसने दिनों में चीज बनेलो छे हो।
0: बिल्कुल,
1: ककड़ी ला खीरा ला तरबूज ला खरबूज ला ठीक ना, एक पानी के मात्रा ज्यादा हो छे।
0: बिल्कुल,
1: अभी जे शरीर से पानी जे छे कम हो जाए छे गर्मी के दिन में, पसीना के रूप में निकली जाए छे या कोनो भी रूप में पानी ज्यादा अगर निकली गलो शरीर से तो हो केना पूर्ति होते, तो प्रकृति ना पूरा करे के वास्ता जो मौसमी फल और सब्जी भी बने लो चाहिए वास्ता।
0: बिल्कुल, और साथ ही भरपेट भोजन ना करें, हल्का भोजन करें और ताजा करें और तले फूले जितने भी चीज हैं मसालेदार खाने से परहेज करें।
1: आरु देखो बासी ते बासी नहीं खाना छे।
0: बिल्कुल,
1: आरु कोनो सब्जी अगर महकीर लो छे, रोटी में अगर फफूंदी पड़ी गले या जे भी छे थोड़ा सा कहना की जे खराब हो जाए छे, और सबसे पहना छे कि और स्वादे जिसमें बदली स्थ और रंग बदली स्थ वो महाका लगता हूँ, तो एनहो अगर कोनो भी खाद्य पदार्थ मिले छे चाहे वो डिब्बा बंद रह या फिर घरों में बनलो ही केनन रह, तो ओकरा से दूरी बना लो, ओकरा जल्दी से फेंकी दो, ओकरा खाना नहीं छे, नहीं तो फिर जिसमें पेट खराब हो जाता हूँ, फिर जिसमें स्वास्थ्य खराब हो जाता हूँ।
0: बिल्कुल, और इससे अपने

0: स्वास्थ्य पे जो है कि असर पड़ता है, और ये असर ना पड़े इसके लिए हमें एहतियात बरतनी आवश्यक है। और साथ ही अकलू भाई देखिए कि ये तो हो गई हमारे स्वास्थ्य की बातें, लेकिन हम अपने इस जीवन को जो जी रहे हैं इस संसार में, यह एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए हुए है प्रकृति के रूप में, और प्रकृति भी स्वस्थ रहे और सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए भी जरूरी है कि हम उनकी देखभाल करें, उनका सहयोग करें, कि अत्यधिक पेड़ों की कटाई ना करें। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं और जो पर्यावरण में व्याप्त हैं, उसके बीच एक ऐसा सामंजस्य होता है, पर्यावरण संतुलन, जो उनके जीवन को सुरक्षित बनाता है।
1: देखो, पारिस्थितिकी संतुलन यानी कि है जे प्रकृति है, एक जीव निर्जीव सजीव अजीब सब छे,
0: बिल्कुल
1: ता सब है मिली करी का है, प्रकृति का है, धरती का सुंदर बनाए छे और जीवित रखे में भी सबका एक दूसरा ना हाथ बटावे छे,
0: बिल्कुल
1: एना में सबके बीच संतुलन होना जरूरी छे। और एकरा में सबसे बड़ो हाथ जे छे वो मानव के ही रहते, मनुष्य के ही रहते, हुनी सोचते तब जे छे पारिस्थितिकी संतुलन बनलो रहते,
0: बिल्कुल। और पारिस्थितिकी संतुलन के कारण ही प्रकृति में जो खाद्य श्रृंखला है वो सही ढंग से चलती है। अगलो भाई, यदि कोई एक प्रजाति कम या विलुप्त होती है तो उस पर निर्भर अन्य जीव का जीवन जो है कि खतरे में पड़ जाता है, और यह संतुलन मौसम चक्र, वर्षा, तापमान को नियंत्रित रखता है।
1: लाखो भाई, पारिस्थितिक संतुलन के मतलब हो छे सजीव जना कि आदमी, पौधा, जानवर, और ओकरो निर्जीव पर्यावरण। निर्जीव पर्यावरण जना कि हो गेले हवा, पानी, मिट्टी, है सबके बीच एक स्थिर सामंजस्य बिठाना छे कि नहीं?
0: बिल्कुल,
1: है एक एहनो स्थिति हो छे जहां प्रजाति के विविधता और ऊर्जा प्रवाह बनलो रहे छे। है संतुलन जैव विविधता, पोषक तत्व के चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र के स्थिरता के वास्ते जरूरी छे।
0: बिल्कुल। और देखिए, यदि पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाए तो इससे क्या होता है कि बाढ़ होती है, सूखा पड़ता है, जलवायु परिवर्तन होती है, और भी ऐसी ही कई विनाशकारी आपदाएं उत्पन्न हो जाती है। और शुद्ध हवा, पीने योग्य पानी, उपजाऊ मिट्टी जैसे संसाधन का चक्र इसी परिस्थितिकी संतुलन पर टिका हुआ है अकलू भाई।
1: हाँ।
0: और ये संतुलन बनाए रखने से पृथ्वी, पौधे और जानवर, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी सुरक्षित रहती है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: लेकिन देखो लाखो भाई, कि पारिस्थितिकी संतुलन यानी प्रकृति के सभ्य जीव और पर्यावरण के बीच बनलो सामंजस्य आज गंभीर संकट में छे।
0: बिल्कुल।
1: वन के अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित शहरीकरण ना प्राकृतिक तंत्र का बहुत खराब तरह से प्रभावित कर लो छे।
0: बिल्कुल। जब मानवीय या प्राकृतिक हस्तक्षेप से अकलो भाई किसी प्रजाति की संख्या में अचानक गिरावट या फिर वृद्धि हो जाती है, तब पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है।
1: और पारिस्थितिकी संतुलन के बिगड़ला से जैव विविधता नष्ट भी हो रहलो छे।
0: बिल्कुल।
1: एकरो सीधा असर खाद्य श्रृंखला, जल संसाधन और मानव स्वास्थ्य पर पड़ी रहलो छे, जना कि बाढ़, सूखा, हीट वेव और नया नया प्रकार की बीमारी के बढ़ना, यही असंतुलन के परिणाम मान लो जा रहा है।
0: बिल्कुल। और वनों की जो अत्यधिक मात्रा में कटाई हो रही है उससे जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, और औद्योगिक और मानवीय कचरे के कारण हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित हो रहे हैं। अत्यधिक शिकार से वन्य प्राणियों का जो चक्र होता है वह भी गड़बड़ हो रहा है। और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हमें उनकी रक्षा करनी होगी।
1: हाँ।
0: राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अकलू भाई, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भूभाग पर कम से कम 33% वन क्षेत्र होना आवश्यक होता है।
1: कितना बताओ जरा, फैनूस बता दो। तो
0: भूभाग यानी कि हमारी धरती पर वनों का जो प्रतिशत है वह 33% होना आवश्यक है।
1: कम से कम 33% ना,
0: ताकि उनका संतुलन बना रहे।
1: है के ना होते, जंगल काटला सा कि जंगल लगेला सा।
0: बिल्कुल।
1: तो पेड़ पौधा लगेला सा ना, ये व्यवस्था हम राजनी का सबका है प्रयास करना छे कि जे छे जतना ज्यादा ज्यादा हुआ वह

0: पीछे पेड़ पौधा लगावा।
1: बिल्कुल, वृक्षारोपण का कार्य हम कर सकते हैं और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर इस 33% के लक्ष्य के करीब हम लोग जा सकते हैं।
0: हमारा लक्ष्य के करीबे नहीं जाना चाहिए हमारा सनी का, बल्कि एकरा से ज्यादा जाना चाहिए। 33% नहीं हो, 50% से भी ऊपर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात होते, कहना कि है अपनो प्रकृति से संबंधित समस्या के ना एकरा दूर करना चाहिए। कब पारिस्थितिकी संतुलन बनल रहते, जबकि वन के प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़ते।
1: बिल्कुल, और जब हम सीमित संसाधनों का प्रयोग करेंगे, विवेक पूर्ण कार्य करेंगे, पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे, तब जो है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रख सकेंगे। और बनाए रखने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन की जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बदलाव और आदतें होती है उसमें प्रभावी कदम उठाने होंगे। जैसे कि देखिए, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना, ऊर्जा की बचत करना, कचरे का सही उपयोग करना और उसका निपटान भी करना, जल संरक्षण करना, जल का संचयन भी करना।
0: हाँ, और यही वास्ता समय रहता ठोस कदम अगर नहीं उठेलो गेले त आवे वाला जे पीढ़ी छे ओकरा बहुत भारी मूल्य चुकावेल पड़ते।
1: बिल्कुल,
0: सतत विकास, प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के जिम्मेदार उपयोग ही पारिस्थितिकी संतुलन का बनाए रखे के एकमात्र रास्ता छके। तो यह वास्ता हमरा सनी का सबका है मिली का सोचेल पड़ते कि है प्रकृति का है धरती का केना बचाए के रखना छे। कहने कि प्रकृति और धरती जब बचते तभी आपनो सनी के भविष्य भी बचलो रहते छे कि नहीं।
1: बिल्कुल,
0: आपनो सनी के ही नहीं, पूरा जीव अजीव जतना छे सबके भविष्य बचलो रहते। एकरा वास्ता यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन जरूरी छे, है सबका मानल पड़ते, जानल पड़ते और एकरा वास्ता सबका मिलीजुली का काम करेल पड़ते। और सबसे बड़ो बात 100% के बात जे छे ओ कि ज्यादा पेड़ पौधा लगावो और

0: Akashvani at 90.
1: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
2: Nexa.
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बिल्कुल
2: संदेश का सुनला के बाद एक बार फेनु से सभ्य श्रोता भाई बहन के स्वागत करै छियै हुनको पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। और देखो जना के हमसनी बात कर रहे राखो भाई कि पारिस्थितिकी संतुलन पर, तो पारिस्थितिकी संतुलन में जे सबके अपना अपना भूमिका हो छे, चाहे वो महासागर ही केहन हुआ। और देखो महासागर से याद एलो कि महासागर जे वो पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छे, जे नहीं केवल सतह के लगभग 71% भाग ढके छे बल्कि पृथ्वी पर जीवन जलवायु और अर्थव्यवस्था का बनावे रखे में भी केंद्रीय भूमिका निभावे छे। एकरा पृथ्वी के फेफड़ा और ऊर्जा भंडार के रूप में भी जानलो जाय छे। तो चलो अब हम सनी है एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से जाने छे कि धरती पर जीवन के नियंत्रण में महासागर के की भूमिका छे। वार्ताकार छे दयानंद चौधरी जी।
3: महासागर स्थल पर वे भूभाग हैं जहां जल का विस्तार है। स्थल मंडल के 71% भाग पर महासागरों का विस्तार है। महासागर गहरे और विस्तृत हैं, दोनों स्वरूप में भूतल पर विद्यमान है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर का स्थान उसके बाद है। यह व्यस्ततम सामुद्रिक जलमार्ग है। हिंद महासागर के समीप विश्व की सघन जनसंख्या बसती है। उत्तरी ध्रुव के निकट आर्कटिक महासागर और दक्षिणी ध्रुव के निकट अंटार्कटिक महासागर

पहले हुए। सामान्यतः महासागरों की आकृति जलमग्न भूभाग के रूप में मानी जाती है, किंतु इसके नीतल का स्वरूप रहस्यमय है। महासागरों का अध्ययन एक रोचक एवं दिलचस्प विषय है। महासागरों का जल लवणता युक्त होता है। सी वाटर इज ऑलवेज साल्ट, बट द डिग्री ऑफ साल्टनेस इज नॉट एवरीवेयर द सेम। सागर संसाधनों से परिपूर्ण है। जलीय जीवों, जंतुओं तथा वनस्पतियों की विपुलता यहाँ पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय जीव व्हेल मछली का निवास महासागरों में ही है। समुद्रों में मछलियों का अपार भंडार है। डॉगर बैंक अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर में मत्स्य उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जो बड़ी जनसंख्या को आहार प्रदान करता है। प्रवाल जीवों का जन्म भी समुद्रों में ही होता है। प्रवाल अपने शरीर एवं आकार में एक विचित्र प्रकार का जीव होता है, जो महासागरों में पाया जाता है। वैसे तो समुद्रों में असंख्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं। उन जीवों में कुछ जीव हैं जो समुद्र में विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं। उन्हीं में एक जीव प्रवाल है। प्रवाल मूंगे के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका शरीर चूना तथा डोलोमाइट से युक्त अत्यंत कोमल एवं स्पंज के सदृश है। समुद्रों में कई प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों से औषधियों का निर्माण किया जाता है। जापान और चीन ने असाध्य रोगों के चिकित्सा में इन साधनों का उपयोग कर चमत्कार पैदा किया है। महासागर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के महत्वपूर्ण मार्ग हैं। विश्व में 10 समुद्री मार्ग प्रमुख हैं, जिनमें उत्तरी अटलांटिक मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग, भूमध्य सागरीय मार्ग, दक्षिण अमेरिका मार्ग, दक्षिण अफ्रीका का केप मार्ग, पनामा नहर, स्वेज नहर, सू नहर, गोटा नहर, मैनचेस्टर नहर, उत्तरी सागर नहर, न्यू वाटर वे वोल्गा डॉन नहर एवं बैलेट नहर से बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। दुनिया के विशाल नदियों का जल समुद्रों में ही आत्मसात होता है। समुद्रों के जल से निरंतर वाष्पीकरण की क्रिया होती है। जब सूर्य का ताप समुद्र जल पर पड़ता है तो यह क्रिया प्रारंभ हो जाती है और वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगती है। वायुमंडल में संघटित होकर पुनः यह वसुधा पर लौट जाती है। कुछ जल पृथ्वी के गहरे क्षेत्रों में चला जाता है और झरनों के रूप में बाहर आता है, तथा शुष्क मौसम में नदी नालों को संपोषित रखता है। नदियां अंततः समुद्र में मिलती हैं और इस प्रकार जल फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से जल चक्र आरंभ हुआ था। समुद्र से वायुमंडल, वायुमंडल से स्थलमंडल तथा स्थलमंडल से वापिस समुद्र में जल के इस कभी न समाप्त होने वाले संचलन को जलीय चक्र कहते हैं। समुद्रों की ओर से स्थल की ओर पवने चला करती हैं तथा आर्द्रता युक्त ये पवने स्थल पर भारी वर्षा करती हैं। समुद्रों में ज्वार भाटा उठते रहते हैं और कई प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं। ज्वार भाटा से बिजली भी पैदा किए जाने की संभावना बन रही है। समुद्रों के अंदर कई प्रकार की आकृतियां भी मिलती हैं, जैसे तटीय भृगु, तटीय कंदरा, तटीय ज्यों, तटीय महराब, लघु निवेशिका, सागरी स्तंभ, तरंग, घर्षित, वेदी तथा अपतटीय सोपान प्रमुख हैं। समुद्रों में स्थल से बहने वाली नदियों तथा निक्षेपित पदार्थ और जलीय जीवों के मृत्यु द्वारा कई प्रकार के निक्षेप जमा होते रहते हैं। समुद्रों की आकृति में महासागरी छज्जा, ढाल, मैदान, गर्त एवं खाइयां प्रमुख हैं। अगर ये समुद्र पृथ्वी पर नहीं रहते तो शायद मानव का अस्तित्व नहीं रहता। पर्यावरण के संतुलन में महासागरों की अनन्य भूमिका है। लहरों, धाराओं का भी समुद्र के किनारे स्थानों में जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीवन का

0: अस्तित्व इन महासागरों के कारण मिलता है। महासागरों में अपार संसाधन विद्यमान है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि जब विश्व की आबादी की आवश्यकताएं स्थल भाग के संसाधनों से पूरी नहीं हो पाएंगी तो ये महासागर अपने अंतरतम में सुरक्षित संसाधनों से इसकी आपूर्ति करेंगे। वैज्ञानिक इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। समुद्र तटों पर खनिज तेल की खोज जारी है। समुद्र के तटीय भाग में मानव जनसंख्या का संकेंद्रण है। ये विशाल उर्वर मैदान हैं। कुछ विशेष प्रकार की फसलें समुद्र तट पर उगाई जाती हैं, जैसे नारियल, धान। भारत का मालाबार प्रदेश, कोंकण तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तट, कलिंग प्रदेश एवं आंध्र तट काफी उर्वर संभावना युक्त है। समुद्र तट स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। ये विशाल क्रीड़ांगन है। यहाँ विश्व की अधिकांश आबादी मातदिल जलवायु के कारण निवास करती है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एवं विश्व के कई ऐसे नगर समुद्र तटों पर अवस्थित हैं। हाल के वर्षों में भूमंडलीय तपन के कारण न केवल वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ा है, महासागरों में भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। सागरी जल का प्रदूषण मुख्य रूप से सागर तटवर्ती भागों में नगरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन के कारण होता है। सागर तटीय जल में किसी एक तत्व के सांद्रण में वृद्धि के कारण विकट पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जापान तट के पास अवस्थित मीनामाता नगर से पारायुक्त अपशिष्ट पदार्थों के मीनामाता खाड़ी से अधिक मात्रा में प्रवेश के कारण पारा विषायन के कारण मीनामाता नगर के कई निवासियों की मृत्यु हो गई है। इस कातिल रोग का इतना भीषण प्रकोप हुआ है कि इसका नाम ही मीनामाता रोग रख दिया गया। समुद्री टैंकों से परिवहन वाले पेट्रोलियम के टैंकरों से रिसाव एवं अन्य तरह के प्रदूषणों से ये महासागर आक्रांत हैं। अत्यधिक नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा रासायनिक पदार्थ के उत्सर्जन से प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। फलस्वरूप प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। महासागरों में विक्षोभ होने से मौसम चक्र प्रभावित हो रहा है तथा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही हैं, जैसे सुनामी भीषण प्राकृतिक आपदा है जिसने प्रशांत तटीय क्षेत्रों में धन जन को अपार हानि पहुंचाई है। इसके अतिरिक्त हरिकेन, ओर्नेडो, तूफान, चक्रवात, झंझावात आदि निरंतर की घटनाएं हो गई हैं। अगर प्राणियों के अस्तित्व को बचाना है तथा जीवन के नियंत्रण को कायम रखना है तो महासागरों को प्रदूषण से मुक्त रखना होगा, तभी महासागर भविष्य के संभावनाओं के द्वार खोल पाएंगे।
1: बिल्कुल अकुल भाई, देखिए जलवायु परिवर्तन के द्वारा ही ये इस प्रकार की अप्राकृतिक घटनाएं होती है, सूखा, बाढ़ होता है, आपदाएं होती है। और लगातार हम लोग जो है कि वर्तमान समय में गाड़ी का जो प्रयोग करते हैं उसमें ईंधन का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं, कोयला, तेल, गैस का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन मानवीय कारणों से, हालांकि प्राकृतिक कारणों से भी होता है, लेकिन मानवीय कारणों से भी अत्यधिक तीव्र गति से बदल रहा है और औद्योगिक गतिविधियों के कारण भी यह गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। तो ऐसे समय में जो हमारे महासागर हैं उनकी जो धरती पर जीवन की नियंत्रण में भूमिका होती है काफ़ी सराहनीय है।
2: हाँ, वो तो बात सही छे। और जना कि देखो बतेबे कर लेके आर हम से जानबो करे छे कि महासागर के जे भूमिका छे वो धरती पर जीवन के नियंत्रण में वो बहुत ज्यादे छे, जना कि जलवायु के नियंत्रण आरो पर्यावरण संतुलन में भी। ऑक्सीजन के उत्पादन महासागर दुनिया के लगभग आधा ऑक्सीजन यानी कि लगभग जो 50% जे छे ऑक्सीजन उत्पन्न

0: करे छे के है महासागर ना
1: बिल्कुल
0: कार्बन सिंक। महासागर मानवीय गतिविधि से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 25% अवशोषित करे छे, जकरा से ग्लोबल वार्मिंग का कम करे में मदद मिले छे। आजकल की समस्या देखे जो ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय तापीकरण जो हो रहा छे, यानी कि गर्मी जो बढ़ी रहा छे पूरा धरती पर के, तो एक बहुत प्रकार की समस्या हो रहा छे।
1: बिल्कुल
0: एना में जो कार्बन डाइऑक्साइड छे वो सबसे मुख्य गैस से के ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ावे में, तो एकरा महासागर की करे छे अवशोषित करे छे। तो अवशोषित जब कर ले छे तो ओकरा से कुछ तक कम हो छे।
1: बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे पेड़ भी हैं अगलो भाई जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं। अब देखिए नीम का पेड़, पीपल का पेड़, नीम के पेड़ में क्या होता है कि वह अभी खासकर गर्मी के दिन में उसके नीचे बैठने से यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वह हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते रहता है।
0: देखो पेड़ पौधा तक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करे वास्ते छेबे करे,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जना कुछ जे पेड़ बतेल हो तो वो जो है हमेशा यानी 24 घंटा ऑक्सीजन देते ही रहे छे। कुछ पेड़ हो छे जे कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा लगल उल्टा वह प्रतिक्रिया करे लगे, लेकिन है जे पीपल हो लो तो या कुछ कहिए 24 घंटा ऑक्सीजन देता रहे छे, तो यह वास्ते ओकरो मान्यता भी ज़्यादा बढ़ी जाए। और महासागर के जहाँ तक बात छे तो यहाँ तापमान नियमन करे में भी अपनो जैसे हाथ बटावे छे। महासागर अतिरिक्त ऊष्मा के 90% से अधिक हिस्सा अवशोषित करे छे, जे पृथ्वी के तापमान के रहे योग्य बनावे रखे में मदद करे छे। सोचो अब जे ऊष्मा होले ओकरो अवशोषित कर लेके, जे कार्बन डाइऑक्साइड ले ओकरो कुछ हिस्सा का अवशोषित कर लेके, एकरा से धरती पर जीवन बचाए के रखे में कितना बड़ा मदद मिले छे। तो महासागर के भूमिका धरती पर जीवन के नियंत्रण में बहुत ज्यादा छे। आरो जीवन आरो जैव विविधता, आज हम इसने बात कर रहे लिए पारिस्थितिक संतुलन के बारे में, तो जीवन आरो जैव विविधता के भी आधार महासागर छे, असीम जीवन छे महासागर में। महासागर अनगिनत समुद्री जीव, मछली आरो प्रवाल भित्ति के घर छे, आरो भोजन के भी स्रोत छे महासागर में। विश्व के आबादी के एक बड़ो हिस्सा जे छे प्रोटीन आरो पोषण के वास्ते समुद्र से प्राप्त भोजन पर निर्भर करे छे, तब महासागर जे छे वो बहुत ज्यादा अपनो भूमिका निभावे छे है धरती पर जीवन के नियंत्रण में। तो इतना अच्छा वार्ता वास्ते वार्ताकार दयानंद चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे छे। और लगे हाँ जे छे एकटा हमसनी देवी गीत सुने छे सोनी कुमारी के आवाज में।

0: AIR at 90.
1: बिल्कुल देखिए अकलू भाई, विगत 90 वर्षों से आकाशवाणी के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को विभिन्न प्रकार की जानकारियों के क्रम में मौसम संबंधी भी जानकारी अवगत कराते आ रहे हैं।
2: जरूरी है ना, ज्ञान विज्ञान के साथ साथ मौसम के सूचना भी ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल,
2: देखो आजकनी मौसम के बारे में पहना से जानकारी जब मिली जाए लोगों का तो उन्हें सचेत हो जाए। ठीक ना, जना अब देखो कल की अगर बात करिए, कल जे राती है चक्रवात ले ओकरो सूचना पहने इसले तबियत आदमी ना सब कुछ सड़िया लक है और एकरास की होले कि जे जान माल के हानि होले वो कम होले।
1: बिल्कुल,
2: वास्ते मौसम सूचना भी बहुत जरूरी है। यहाँ आवाज हो जल्दी जल्दी मौसम सूचना और कृषि संबंधित जे समसामयिक सलाह है वो अपनो श्रोता भाई का जल्दी जल्दी बता दो।
1: बिल्कुल, देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रख भाई, कल से यानी कि 27 से 31 मई के दौरान 16 से 17 मई तक में जिले में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
2: यानी कि 27 से 31 मई के दौरान ना।
1: बिल्कुल, और वहीं हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है,
2: यानी कि पानियों पड़ता और उसके बाद मौसम शुष्क भी हो सकता।
1: बिल्कुल, अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है और सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत तथा दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है और वहीं कुछ चेतावनी भी है कि आंधी और बिजली तूफान आदि तेज सतही हवाएं जो है कि चल सकती है और उसके बाद हल्की एवं बार बार सिंचाई करें सामान्य सलाह ये भी है और मल्चिंग अपनाएं। दोपहर में उर्वरक एवं कीटनाशक का छिड़काव ना करें। पशुओं हेतु छाया एवं पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करें,
2: है तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें एवं खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें।
2: और देखो जे किसान भाई मूंग देर से बुनलो होते तो मूंग और उड़द फसल में हेरी कैटरपिलर के प्रकोप का नियमित निगरानी करे के सलाह हुनका देलो जाए छे। प्रकोप देखाए पड़ला पर मिथाइल पैराथियन 50 EC प्रति 2 मिलीलीटर पानी के छिड़काव मिलाकर करना छे।
1: बिल्कुल,
2: और भिंडी वास्ते सलाह छे कि भिंडी में माइट आरु फल आरु तना छेदक आरु कद्दू वर्गीय फसल में फल मक्खी के प्रकोप के नियमित निगरानी करे के सलाह देलो जाए छे किसान भाई का। माइट के प्रकोप देखाए पड़ला पर एथियन 1.5 से 2 मिलीलीटर पानी के छिड़काव करना छे। भिंडी में फल और तना छेदक के प्रबंधन हेतु जे छौ मेलाथियन 50 से 1 मिलीलीटर या डायमेथियोएट 30 EC प्रति 1.5 मिलीलीटर पानी के छिड़काव करना छे। कद्दू वर्गीय फसल में फल मक्खी के नियंत्रण वास्ते डायमेथियोएट 30 EC प्रति 2 मिलीलीटर 10 ग्राम चीनी प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आकाश साफ रहला पर ही करना छे।
1: बिल्कुल, और वहीं पे आम के बगानों में कीट का प्रकोप की निगरानी करने के लिए भी सलाह दी जाती है अकलू भाई। यदि रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट प्रति 2 मिलीग्राम लीटर पानी या लैम्डा साहेलोथ्रीन प्रति 2 लीटर पानी का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करना चाहिए। और वहीं पशुपालक भाइयों के लिए भी सलाह है कि गाय के पशु जो पालते हैं, ब्याने वाले पशु को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दें। एवं दूध देने वाले पशु को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन एवं भैंस का 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु जरूर खिलाएं।
2: और फसल में नमी के कमी, फूल आरु फल झड़ना, सब्जी आरु दलहनी फसल के वृद्धि प्रभावित, पशु में गर्मी के तनाव, हैसनी मौसम चेतावनी के संबंधित प्रभाव भी देखलो जाओ पड़े छो। एकरो वास्ते छो किसान भाई आरु पशुपालक भाई सचेत हो जा। आरु अब चलो हम असनी फैनू लौटे छे कार्यक्रम के अंदर। आरु सुने छे एक निमन रंग झुमर।

बिल्कुल। देखिए अकलू भाई, अभी हम लोगों ने इतना सुंदर झूमर सुना, और सभी गीतों की जो

0: अच्छी होगी और तभी वो अच्छा मुनाफा कर पाएंगे। और धान लगाने के लिए वो कैसे खेती करते हैं, किस प्रकार उनकी सिंचाई करते हैं और उनका बीज को कैसे वो जो है कि पहले बिचड़ा तैयार करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम अपने एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से आइए जानते हैं। और वार्ताकार हैं डॉक्टर गुरशरण पवार।
1: इसकी महत्ता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक वर्षों में इसको अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया है। इसका उत्पादन देश के लगभग सभी राज्यों में किया जाता है और हमारा ये बिहार राज्य इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दोनों दशाओं में, जैसे कि जहाँ जल भराव वाली मृदाएँ हैं एवं सुखाड़ की स्थिति वाली मृदाएँ हैं, दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही स्थिति में हम चावल की खेती करते हैं। सर्वप्रथम उचित भूमि का चयन, अच्छी जल निकास वाली समतल भूमि की आवश्यकता होती है। अम्लीय एवं क्षारीय जल प्लावित निचली भूमि में इस तकनीक से खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में हम सभी संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं कर सकते।

0: बिल्कुल देखिए श्रोताओं, अभी जो है कि हम लोग बात कर रहे थे पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कि खेती बाड़ी के कार्य भी आते हैं, और पारिस्थितिकी संतुलन में हम जो है कि आज बात कर रहे थे विभिन्न प्रकार के जो उपाय हैं हमारे लिए वो हम करते हैं, और उसमें पेड़ लगाना और प्रदूषण को रोकना, और उसके बाद जो है कि मिट्टी प्रदूषण रोकना, हवाओं को कैसे हम स्वच्छ रख पाएँ, उसके लिए बहुत सारे लोग हमारे संतुलन पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इनका हमारा कर्तव्य भी है, उनमें हमें भाग लेना चाहिए। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हमारा जीवन यापन पूरा जो है कि प्रकृति के संसाधनों पर ही निर्भर होता है, और फिर हम हमेशा उन प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं करते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, इसलिए उनके असंतुलन में हम लोग योगदान नहीं दें, और उनके योग संतुलन के लिए योगदान दें। और असंतुलन के कई कारक होते हैं कि उनमें हम प्रदूषण के अलावे बहुत सारे ऐसे वनों की लगातार कटाई कर रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं, और जंगलों के नष्ट करने से हम जंगली जीवों के आवास को नष्ट कर देते हैं, जो कि पशु पक्षी जितने भी होते हैं वे हमारे खेतों में हमारे फसलों में कीट पतंगों को खाकर एक तरह से हमारे पर्यावरण को जो है कि संतुलित बनाए रखने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: में उपलब्ध आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी हेतु मिट्टी जांच बहुत जरूरी है। उसी के अनुसार हम अपना पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। किस्म का चयन, किस प्रकार की हम किस्म इसमें प्रयोग करें, इस तकनीक में संकर धान का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है, इसलिए इसकी सिफारिश की जाती है, क्योंकि संकर धान में अधिक कल्ले निकलते हैं और अधिक उत्पादन देने की क्षमता होती है और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग वो कर सकते हैं। साधारणतया विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को SRI द्वारा उगा सकते हैं। अच्छी फसल के लिए स्थानीय एवं लोकप्रिय किस्म को भी उगाना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हों। बीज दर का अगर हम बीज की बात करते हैं तो 1 एकड़ धान के क्षेत्रफल के लिए 2 किलो बीज, अच्छा स्वस्थ बीज का उपयोग करना है। निम्नलिखित पद्धतियाँ अपनाकर स्वस्थ एवं समुचित बीजों का चयन करें। फर्स्ट जो प्रथम करते हैं, बीज को पानी में डुबो करके डुबोने के लिए लगभग 1.65 किलो नमक को 10 लीटर पानी में मिलाकर नमक का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ताजे अंडों को नमक के मिश्रण में डालने से अगर अंडा तैर रहा हो तो नमक के मिश्रण की सांद्रता बीज डुबाने के लिए ठीक है। यदि अंडा नीचे रह गया तो नमक डालकर मिश्रण की सांद्रता नमक डालकर बढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारा अंडा तैरता रहे। पौधशाला के लिए चयन किए गए

0: बीजों को नमक के मिश्रण में डालना चाहिए, बीजों को।
1: बिल्कुल। और अभी हम लोग सुन रहे थे धान के किस्मों का चयन, और अब आइए सुनते हैं एक कृषि गीत।

0: हाँ, तभी हम असनी है पूर्व प्रसारित वार्ता सुनलिए डॉक्टर गुरुशरण पवार जी से। हुनी कतना अच्छा बात बतलके कि धान के बीज के चयन केना करना चाहिए और धान के खेत के तैयारी भी केना करना चाहिए। एकरा से उम्मीद छे कि किसान भाई के बहुत फायदा होते और लगे हाँ जे छे आवा एकटा हम असनी कृषि गीत सुनै छिए
1: बिल्कुल
0: विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा जी से।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7 बजने को हैं, रांची से सुनिए प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 7:10 हुए हैं। हमारा पर्यावरण कार्यक्रम में अजीत कुमार की वार्ता सुनिए, स्वच्छ पर्यावरण नई पीढ़ी के लिए उपहार।

मानव समुदाय पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। हमें मालूम होना चाहिए कि वन, नदियाँ, पर्वत, झीलें, पशु पक्षियाँ, पेड़ पौधे, सभी जैवीय संसाधन पर्यावरण का ही अंग है। इसे स्वच्छ रखना जरूरी है। आर्थिक प्रगति के दौर में पर्यावरण के आंगन में समस्याओं का भविष्य दिख रहा है। यह खतरे की घंटी स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध भारत के निर्माण में बाधा है। स्वतंत्रता के 6 दशक बाद भी देशवासियों के समक्ष एक चुनौती भरा समस्या है। आए दिनों वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री ने गांधी जी के सपनों को साकार करने के वास्ते एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा उठाकर नई पीढ़ी के साथी को अपना हाथ बढ़ाने का आह्वान किए हैं। यह अभियान गांधी जी के जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन से शुरू किया गया। इसके माध्यम से भारत को स्वच्छ बनाने का एक क्रांतिकारी अभियान चलाने को कहा। इस कार्य को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल से लेकर सारे तंत्रों को जोड़ा गया ताकि सफलतापूर्वक इसे सफल किया जा सके। वर्तमान के बढ़ते औद्योगिक विकास, नगरीकरण एवं जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई, नदियां, पर्वतों, झीलों, खेतिहर, पशुओं, हवा, पानी, आहार सामग्रियाँ सभी प्रदूषण के चपेट में हैं। कृषि ज्योत भूमि तथा जल एवं कांपती धरती, प्रलयंकारी सागर, मौसम व जलवायु की भयावहता से तूफानी चक्रवात का खौफनाक परिदृश्य, धुंध, बर्फबारी आदि से पर्यावरण के पारितंत्र को काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे जैव पारिस्थितिकी तंत्र काफ़ी असंतुलित हुआ है। जीवन का एक शाश्वत सत्य स्वच्छता भरा पवित्र जीवन जीने की कला को मानना होगा। देश के नई पीढ़ी के युवा सपूतों के कंधों पर यह जिम्मेदारियां काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों उपयोगी कार्यों को पर्व त्यौहार सा उत्सव जान स्वच्छता को बरकरार रख सकते हैं। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों, राजनेताओं एवं कर्मचारियों को आगे आना होगा। इस सफलता के लिए सभी समुदायों जैसे राष्ट्रीय शिक्षा तथा राष्ट्रीय नीति के आलोक में काम करना होगा। राष्ट्रीय स्तर के माध्यमिक स्तर के सभी शिक्षण संस्थानों द्वारा सहज, सरल, सुलभ ढंग से सर्वांगीण विकास उन्मुख कार्यक्रमों को भी सफल बनाया जा सकता है। हमारा भारत पर्यावरण संवर्धन हेतु सतत प्रयास करता रहा है। आज जरूरत है वातावरण को एक संघर्ष के माध्यम से स्वच्छ बनाने की। ऐसे जंग में पुरानी पीढ़ी काफ़ी असमंजस में जीने को मजबूर है। उसे पर्यावरणीय खतरों से निपटाने का मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसे में युवाओं की भूमिका बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। वातावरण के विकास के लिए संस्कृति और परंपराओं का मिश्रण होना जरूरी है। इसलिए हमारे कई सांस्कृतिक धरोहर वातावरण से जुड़े हैं, जैसे शंकर का सवारी, नंदी बैल, दुर्गा का सिंह, सरस्वती की हंस, लक्ष्मी की उल्लू, विष्णु के शेषनाग, यमराज का भैंसा, दत्तात्रेय का कुत्ता आदि। ऐसे कई देवता हैं जो विभिन्न रूपों में पर्यावरण से जुड़ इसके महत्ता को सदा याद दिलाता है। यह हमारी स्वच्छता को भी दर्शाता है। इस परंपरा को हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रम व्यवस्था के तहत स्वच्छता पर भी ध्यान केंद्रित किया था। ये जीव जंतुओं,

पशु पक्षियों से भी प्रेम पूर्ण व्यवहार करते। तभी न गोकुल के गायों की सेवा कर गोपाल बने। सम्राट चंद्रगुप्त मयूर से प्रेम करने के कारण अपनी राजमहल में मोरों के लिए एक वाटिका तथा पक्षी विहार ही बनवा डाले। विदर्भ दमयंती हंस से स्नेह रखती थी। वर्तमान स्वार्थ के कारण पुरानी स्वच्छता की संस्कृतियां में काफी बदलाव आ गया है। उनके स्थान पर प्राप्त संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। आधुनिक बदले जीवन शैली में हम विज्ञान के विविध आयामों के तरफ अग्रसर हैं। ऐसे में वन, जल, वायु, खनिज संपदाओं का तेजी से दोहन व शोषण कर रहे हैं। इन दिनों हमारा मनोबल काफी बढ़ गया है। इससे हम प्राण वायु देने वाले ऑक्सीजन जो समुद्र से मिलता है उसे प्रदूषित करने पर तुले हैं। वातावरण प्रदूषण से जलवायु एवं मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। यदि सूखी धरती का प्यास बुझाने वाला बादल उमड़ घुमर कर न बरसेगा तो इस धरती पर फसल बाग बगीचे कैसे टिक पाएंगे। मौसम चक्र में परिवर्तन से अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि का प्रकोप जानलेवा हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण से कई रोगजनक महामारियां तेजी से फैल रहा है। इसमें जल जनित बीमारियों में हैजा, पीलिया, टाइफाइड, कालाजार, मलेरिया, वायु प्रदूषण से खांसी, सर्दी, दमा, हृदय रोग, कैंसर जैसे कई अन्य घातक बीमारियां हो जाते हैं। ऐसे रोग जीवाणुओं और विषाणुओं द्वारा जीवन को मृत्यु की तरफ धकेल मानव को रोगी बना रहा है। प्रदूषण फैलाने में मनुष्य का प्रकृति के तरफ क्रूरता की अधिकता के कारण कलुषित हुआ है। मानवीय प्रगतिवादी सोच के कारण हमारी हरियाली व स्वच्छता छिनते जा रही है। आए दिनों प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग काफी बढ़ गया है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए घातक है। यह जब सरता तब इसके विषैले पदार्थ को मिट्टी अपने में अवशोषित कर भूजल को प्रभावित करता है। इसे जलाना और भी अधिक खतरनाक है। जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फोजिन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई ऑक्सीजन आदि जहरीली गैसें हवा में जहर घोलता है। इसमें स्वच्छ वातावरण प्रदूषित हो जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग को न्योता दे भयावह स्थितियां उत्पन्न करने की शक्ति देती है। फिर यही जानलेवा बन जाता है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली वासी 56 लाख टन प्लास्टिक का कूड़ा कचरा फेंकते हैं। यही हालत देश के अन्य शहरों का भी है। आज हमारे देश में चतुर्दिश पर्यावरणीय संकट मंडराने लगे हैं। इन खतरों से खासकर हमारा युवा किशोरों का युवा मन तनाव व अवसाद के शिकार हो रहे हैं। हमारे काले कागुजारियों से प्रकृति का मन काफी क्रोधित हो दुर्गा बन गई है। यह दुर्गा अपने चक्र से सर्वनाश करने को तुली हुई लगती है। सबों का लालन पालन करने वाली प्रकृति अब क्रुद्ध सिंहनी हो संसार को खाने के लिए उतारू हो गई है। भूकंप, ज्वालामुखी, सूखे, अकाल, बाढ़, जलवायु परिवर्तन से मौसम चक्र में परिवर्तन हो रहा है। पर्यावरण का तेवर देख संपन्नता में दरिद्रता का बोध नजर आता है, क्योंकि दरिद्रता बार बार इच्छाओं के ही कोख से जन्म लेकर स्नेह स्नेह आगे बढ़ता है। प्राणियों में मानव की इच्छा और अधिक पाने की तरफ बलवती होती जा रही है, इसलिए वह यातना के कालचक्र में फंसते जा रहे हैं। ऐसे में जीवन को अनमोल मान युवा शक्ति को आगे आना होगा। प्रदूषण से जीवन टूट रहा है, टूटा जीवन बिखर रहा है। इसके निदान निमित्त युवाओं को प्रकृति माता के प्रति अति संवेदनशील होने की जरूरत है। इसके लिए गांव के युवाओं का संगठन बनाकर अपने उत्पन्न खतरों की घंटी को ज्ञान के माध्यम से बताना होगा। पेड़ की कटाई के स्थान पर पेड़ लगवाने की, वृक्षारोपण से कार्बन के स्थान पर प्राणदायिनी ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। इसे सुंदर, स्वच्छ, निर्मल बनाने में कृषि के साथ साथ कवि साहित्यकारों की भी आवश्यकता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि हृदय की धड़कन पर प्राणी का जीवन है। अंतरिक्ष की सुरक्षा में ही भूमि का वातावरण सुरक्षित है। अंतरिक्ष रूपी हृदय के नष्ट होने से ब्रह्मांड का विनाश होता है। पर्यावरण में जैव मंडल जल, थल,

0: और वायु तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसमें से किसी भी एक के नष्ट होने से जीवों के अस्तित्व पर खतरा निश्चित है। प्रकृति जगत स्वयं तीनों मंडलों से तालमेल कर संरक्षित करता है। पर्यावरण के प्रति बच्चों को शुरू से ही शिक्षण देने की आवश्यकता है। वृक्ष की महत्ता को समझाते हुए छात्र छात्राओं को अपने जन्मदिन, ब्याह आदि के अवसर पर यादगारी के तौर पर वृक्षारोपण करना चाहिए। विभिन्न संस्थाओं जैसे स्कूल कॉलेज स्तर के युवा नेशनल राष्ट्रीय सेवा कोर, भारत स्काउट गाइड, NCC, नेहरू युवा केंद्र एवं कई सामाजिक एवं राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में युवा ही सदस्य होते हैं, अतः पर्यावरण के प्रति सामूहिक अभियान चलाकर जन जागरण करना है। ऐसे में स्वच्छता का महत्व जानकर युवाओं को आगे आना होगा अपने पर्यावरण के प्रति। इस अभियान की सफलता के लिए स्लोगन, स्वच्छता संबंधी नारों को दीवार लेखन, रेडियो, TV, समाचार पत्र पत्रिकाओं द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इससे गांधी का सपना पूरा होगा। नगरों एवं उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे, मल, जल, ठोस तथा द्रव्य अवशिष्टों से विषैली गैसें तथा धुएं के उत्सर्जन से प्रदूषण का चौतरफा गंदगी पसरा देखा जा रहा है। ऐसे दूषित अवशिष्टों का उपचार हेतु युवाओं को वैज्ञानिक सोच के साथ शोध करना होगा, ताकि विकास के साथ साथ विनाश से बचाया भी जाना है। ये अपने शोधन के माध्यम से इसे आगे करना होगा। सिंचाई द्वारा जल प्राप्त कर प्रदूषण मुक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास करना होगा। जहां इसका अभाव है वहां द्रव कचरे को फिल्टर से प्रवाहित कर ठोस अवशेष को अलग कर खनिज जल का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे जल से वन वृक्षों, बाड़ी झाड़ी में फल सब्जियों की बागवानी को सींच सकते हैं। ठोस अवशिष्ट पदार्थों को हम गड्ढे भरने के काम में ला सकते हैं। ऐसे कचरे को विद्युत के उत्पादन में भी हम उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक विषों तथा पॉलिथीन के विरुद्ध युवाओं को एक चुनौतीपूर्ण अभियान चलाने की आवश्यकता है। अवशिष्ट वस्तुओं में कांच, पॉलिथीन, धातु आदि कई ऐसे पदार्थ आते हैं। ऐसे पदार्थों को ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक जगहों में 3-4 प्लास्टिक या धातु ड्रम, लोहे या सीमेंट के बने कक्ष लगा दें। प्रथम में कांच, दूसरे में पॉलिथीन तथा तीसरे में प्लास्टिक के धातुओं को रखें। शेष में सुई, पिन, कील, ब्लेड, सिरिंच आदि जमा कर सकते हैं। इसके लिए कूड़ेदान के अलग अलग पात्रों में अवशिष्ट पदार्थों को डालें। ऐसे कार्यों को अपने अपने घरों में भी कर सकते हैं। फिर उसे सप्ताह या माह में किसी एक दिन जमा गंदे वस्तुओं को पर्याप्त केंद्रों पर डाल हम सफाई कर सकते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए जड़ी बूटियों के पौधे लगावें। विलुप्त संजीवन की सुरक्षा व संरक्षण करें। सुवास फैलाने वाले फल फूलों का बाग लगाकर हवाओं में घुले दुर्गंध के स्थान पर सुगंध फैलाकर स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं। ऐसे पुण्य कार्य से धरती दमक उठेगी, जल स्रोतों से स्वच्छता का प्रस्फुटन होगा। इस तरह प्राण वायु स्वस्थ एवं साफ रहेगा। स्वयं सांस से ली गई शुद्ध हवा ग्रहण कर हम प्राणी स्वस्थ रहेंगे। प्रदूषण रोकने में नीम, अशोक, तुलसी, इमली, बैर के पौधे धूल, धूप, धुआं सोखने का काम करता है। इससे नई पीढ़ी को काफी लाभ मिलेगा। ऐसे कार्यों का गुरुतर भार हमारे नई पीढ़ी के जो युवा हैं उसी के सबल कंधों पर रखना है। साथ ही इसे साथ देने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिकों को कदम से कदम मिलाना होगा, तभी स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ, प्रदूषण मुक्त भारत का नवनिर्माण होगा। सभी को आज ऐसे अद्भुत शुभ संकल्प लेना होगा, तभी युग क्रांतिवीर युवा का संदेश रुधारी होगा, क्योंकि युवा ही हमारे दृश्यमान पर्यावरण की ज्वलंत समस्याओं के समाधान का आशा की किरण है।
1: हमारा पर्यावरण, इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अजीत कुमार की वार्ता स्वच्छ पर्यावरण। नई पीढ़ी के लिए उपहार, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।

0: अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष किए पूरे। वरिष्ठ नेताओं ने की श्री मोदी के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता की सराहना। केंद्र सरकार ने देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। 18 जून को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनडीए के घटक दलों के नेताओं समेत विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल को एक ऐतिहासिक यात्रा बताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र और अंत्योदय के सर्वोच्च सिद्धांत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का विमोचन किया। पुस्तक में श्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर निर्णय देश की प्रगति और विकास के लिए लिया है।
4: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
3: सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट में सहयोगी रहे रामकृपाल यादव ने कहा कि श्री मोदी अद्भुत क्षमता के धनी हैं। श्री यादव ने कहा कि इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के निर्णयों से देश कठिन परिस्थितियों में विकास पथ पर अग्रसर रहा है।
5: कोरोना के काल से निकाल करके हिंदुस्तान की आवाम को आगे ले जाने का काम, पुनः अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत और क्षमता रखने का काम, ये मोदी के कुशल नेतृत्व का ही तो परिणाम है जो 12 साल का है। एक नहीं, अनेकों काम किया है। तो कई ऐसे इशू थे जिस इशू को उन्होंने रिजॉल्व किया है और देश आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। इसलिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, स्वस्थ रहें और देश के सेवा करते रहें।
3: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश की बड़ी ताकत है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पहली बार शपथ लेते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया था, उसी संकल्प को वे पूरा करने में जुटे हुए हैं।
6: 12 वर्ष हुए हैं। ठीक 12 वर्ष पूर्व 26 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से शपथ लिया था, और उस शपथ को पूरा होते देख, उस संकल्प को पूरा होते देख हम आज देख रहे हैं। 12 वर्ष पूर्व हमारे देश को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज हम टॉप 5 की ओर तीव्रता से अग्रसर होते दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से 12 वर्ष का जो वर्षगांठ है, ये हमें एक मौका देता है, समय देता है कि हम इसका मूल्यांकन करें और इन बातों को जन जन तक लेकर के जाएं।
3: केंद्र सरकार ने देश में जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। श्री शाह ने बताया कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति देश भर में घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से जनसांख्यिकीय बदलाव का व्यापक मूल्यांकन करेगी और इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे से भरी जाने वाली बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराए जाएंगे। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की 1 सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को ही कराए जाने की घोषणा की है। जदयू के वरिष्ठ नेता और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने दावा किया है कि विधान परिषद की सभी 10 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संख्या बल और नैतिक बल दोनों एनडीए के पास है।
7: जिस तरह से हम लोग के एनडीए की गठबंधन का सरकार चल रहा है, जिस तरह से बंगाल का जो रिजल्ट आया, उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 इसको ले लेंगे।
3: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए के घटक दल जल्द ही उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला कर लेंगे और प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी।
8: एनडीए मिलकर जल्द ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और एनडीए एकजुट है और जल्द ही प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरा एनडीए करेगा।
3: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए 1 सीट की मांग की है। श्री मोझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमको परिषद चुनाव में सीटें मिलने से गठबंधन को फायदा होगा।
9: हम कहेंगे कि अगर हमको एमएलसी का पद दिया जाता है, इससे हम एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, हमारा जो दल है, हमारे लोग हैं, और आकर्षित होंगे और उससे एनडीए को फायदा होगा। इसीलिए हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें।
3: राजद की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। श्री सरावगी ने कहा कि प्रदेश की जनता परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊब चुकी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
10: इधर आइए, इधर।
11: इधर?
10: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
12: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
11: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
12: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
11: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
12: शुभ वाणी,
11: लाभवाणी,
12: आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। सऊदी अरब में वार्षिक हज में आज अराफात का दिन है। इसे हज का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर महीने जिलहिज के 9वें दिन आज दुनिया भर के लाखों हज यात्री मैदाने अराफात में जमा हैं और हज के मुख्य रस्म को पूरा कर रहे हैं। बिहार के 2552 श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हैं। सऊदी अरब में मौजूद भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि इस साल हज करने वाले 175,000 से ज्यादा भारतीय जायरीन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव के कारण अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अधिकतर स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
1: दिनांक 27 मई राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधेपुरा एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, शिवहर, वैशाली, बांका और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया है कि आंधी के कारण अलीगंज स्थित आकाशवाणी का टावर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे प्रसारण प्रभावित हुआ है। हालांकि FM और न्यूज ऑन AIR ऐप से समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण सुना जा रहा है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की कई कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेले का आयोजन 25 मई से शुरू हुआ है, जो 27 मई तक जारी रहेगा। मेले के पहले दिन कल 13,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। इनमें 1,876 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया। मेले के दूसरे दिन आज भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया। मेले में आए अभ्यर्थी प्रियांशु पांडे ने कहा है कि राज्य सरकार की यह अच्छी पहल है।
3: भरोसेमंद मेला है, के तहत हम लोग को काफी सारे रोजगार के अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल पा रहे हैं। कोई भी कोई नॉर्मल ग्रेजुएट उसको भी जॉब मिल रहा है, कोई ITI किया है उसको भी जॉब मिल रहा है, और कोई अच्छा कोई डिग्री कोर्स किया है तो उसको भी जॉब मिल रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, एक तरह से बिहार जो है बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, और ऐसे अगर रोजगार मेले काफी और भी आने वाले समय में होते रहेंगे तो हमें काफी अच्छा अनुभव होगा।
2: रोजगार मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों की विभिन्न कंपनियों के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने से खुशी का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से प्रियंका मिश्रा।
0: पटना ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेंस T20 ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। मोइनुल हक स्टेडियम में आज खेले गए फाइनल मुकाबले में पटना की टीम ने बेगूसराय को 23 रन से पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीयूष सिंह के धुआंधार 92 रन की बदौलत पटना ने 8 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। जवाब में बेगूसराय की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। गंगा दशहरा के अवसर पर पटना के गांधी घाट पर नदी में स्नान करने के दौरान 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह घटना दुखद है, ऐसी घटना फिर से ना हो इसके लिए घाट पर एक विशेष टीम तैनात कर दी गई है। भवन निर्माण मंत्री सह मधुबनी जिले की प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने आज DRDA सभागार में जिले में बाढ़ और सुखाड़ की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। श्रीमती सिंह ने अधिकारियों को बाढ़ सुखाड़ की स्थिति में वैकल्पिक फसल योजना को लेकर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार समेत विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन ने इनरवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार को तत्काल प्रभाव से

0: निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए। वरिष्ठ नेताओं ने की श्री मोदी के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता की सराहना। केंद्र सरकार ने देश में घुसपैठ और अन्य कारणों से डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। 18 जून को होगा मतदान। और मौसम विभाग ने आज पूर्णिया और किशनगंज जिले में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश कुमार।
1: सीतामढ़ी जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच सीतामढ़ी जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। जिला प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जिला आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी देखने को मिली, जहां लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान राज्य की उद्योग मंत्री सह जिले की प्रभारी मंत्री श्रेयसी सिंह भी सहयोग शिविर में शामिल होने पहुंची। उनके आगमन पर एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रुन्नी सैदपुर प्रखंड के अथरी पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को लेकर सीधे सहयोग शिविर में आए, ताकि प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इधर जिले में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद ठाकुर के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा तथा विपक्ष पर भी निशाना साधा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड स्थित महुआबा पंचायत ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर जिले और राज्य का मान बढ़ाया है। पंचायत को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और सौर ऊर्जा आधारित नवाचारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया। महुआबा पंचायत की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए

0: जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुँचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराए ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। सीतामढ़ी जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक जिले की 50,000 से अधिक पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है।
1: अभी आप सुन रहे थे सीतामढ़ी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता राजेश कुमार।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 7:51:50 होने को हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनुपमा कुमारी को। आरंभ में इनसे सुनिए ये भजन।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आप सुन रहे थे अनुपमा कुमारी को। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8 बजे हैं, रजनीगंधा कार्यक्रम में सुनिए फिल्मी गीत। आरंभ में सुनिए वो कौन थी फिल्मी लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली। इसे फिर से सुन लें। गीतकार हैं राजा मेहंदी हसन और संगीतकार हैं मदन मोहन।

इस गीत के गीतकार हैं राजा मेहदी अली खां और संगीतकार हैं मदन मोहन। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर एवं महेंद्र कपूर की। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

वक्त फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। गीतकार हैं साहिर लोधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: Hey, boss, retro is the new cool. और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी. वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग. ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते. आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज.
1: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
2: थोड़ी सी बेवफाई. इस फिल्म का गीत सुनिए. लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं खय्याम.

वारिस फिल्म का आपने गीत सुना मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीतकार थे उत्तम सिंह। अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है सोहिनी महिवाल फिल्म से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और शब्बीर कुमार की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं अनु मलिक।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्मी गीत आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में तलाश फिल्म का गीत। एच डी बर्मन

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे हैं। गीतकार हैं नीरज और संगीतकार हैं एच डी बर्मन।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्मी गीत, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। 8:45 होने को है। दिल्ली से सुनिए समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक

0: make more exchanges as we intend to do.
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
2: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
3: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
2: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राज

0: मार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games, Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said, that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: The High-Level Committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the High-Level Committee on Demographic Change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
5: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
6: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज दे मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल.
5: परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी.
2: मिस्टर शाह सेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्वड. ही स्ट्रेस दैट सिंस ड्रोन्स लैंड इन द इंडियन टेरिटरी, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई दोज रिसीविंग सच कंसाइनमेंट्स एंड टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स इफेक्टिवली. क्वाड नेशंस टुडे लॉन्च्ड द इंटर पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द कोऑर्डिनेशन इन मैरिटाइम सर्वेलेंस. Addressing a press conference in New Delhi after the conclusion of the meeting, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs, K. Nagaraj Naidu, said, Foreign ministers strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. He said that in the joint statement, terrorist attack in Pahalgam was condemned.

0: से अधिक देश के 500 से अधिक एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
1: उन्होंने कहा कि तकरीबन 75 मुल्कों ने योगा आसन चैंपियनशिप के लिए इंदिराज कराया है और दुनिया भर से 5000 से ज़्यादा शुरका किस हिस्से में हिस्सा लेने का इम्कान है। तकरीब के दौरान वजीर मौसूफ ने पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप 2026 के लिए मास्कट, जर्सी और चैंपियनशिप फिल्म का भी आगाज़ किया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमी ने हज अहम तरीन मनासिक के हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आजमी ने हज सफ़ेद अहराम बांधे हुए थे, जिन्होंने खुतबे हज की समात की और मस्जिद निबरा में एक साथ जुहर और असर की नमाज अदा की। अब तमाम हुज्जाज कराम मुजदलफा के लिए रवाना होंगे और एक साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रमीय जमरात के लिए कंकरियाँ भी इकट्ठा करेंगे। वो मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो कल सुबह मीना वापस पहुंचेंगे, जहां वो कुर्बानी का फरीजा अंजाम देंगे और रमीय जमरात करेंगे। इस साल 1,75,000 से ज़्यादा भारतीय हुज्जाज कराम फरीज हज अदा कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने की भी पेशगोई की है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरक बयान में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके से मुतालिक बेबुनियाद हवालों को वाज तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन बेबुनियाद हवालों से मुतालिक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुतालिका फरीकैन के लिए भारत का मौकिफ कतई, वाजह और अच्छी तरह जाना पहचाना है। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि सूरत हाल पर तबसरा करने का किसी भी दूसरे मुल्क को कोई हक नहीं है। आज वियतनाम के दनांग में 23 साल तक की उम्र की कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा जीता। 65 किलोग्राम जुमरे में मोहित कुमार ने किर्गिस्तान के खिलाड़ी को 12-4 से हराकर सोने का तमगा जीता। 79 किलोग्राम के जुमरे में चंद्रमोहन ने भी कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी के साथ एक सनसनीखेज मुकाबले में उसे 7-6 से शिकस्त दी। इस दौरान 92 किलोग्राम के जुमरे में पुनीत कुमार ने चांदी का तमगा जीता। 125 किलोग्राम के जुमरे में भी भारत को चांदी का तमगा मिला। बैडमिंटन में आज ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु और भारतीय मर्दों की डबल की जोड़ी सत्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के 16वें राउंड में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वारदानी को 21-17 और 21-18 से हराकर टूर्नामेंट के 2रे राउंड में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार और। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहत के बायस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निज़ाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम बैंड के 100.5

0: एक मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। धनंजय मिश्र का लिखा नाटक सुनिए बदलता गांव, प्रस्तुत करता है अमित कुमार।
1: प्रस्तुत है नाटक बदलता गांव। लेखक हैं धनंजय मिश्र, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक अमित कुमार।

0: लगता नहीं ये मेरा ही गांव है। कितना बदल गया है सब कुछ।
1: सुबह सुबह नए नए बाबा, लगता है कोई मकान ढूंढ रहे हैं। अच्छा चलकर पूछता हूं। बाबा आप किसी के मकान को ढूंढ रहे हैं क्या?
0: हाँ बेटा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये खुदरामपुर गांव ही है ना?
1: हाँ बाबा, ये खुदरामपुर ही है।
0: कहीं ये दूसरा खुदरामपुर तो नहीं?
1: आप किस खुदरामपुर की खोज कर रहे हैं बाबा? 50 कोसों तक दूसरा कोई खुदरामपुर है ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा, अच्छा।
1: लेकिन बाबा,
0: हाँ
1: आप ढूंढते हैं किसे?
0: ढूंढने को तो मैं इस गांव में सभी को ढूंढ रहा हूँ।
1: सभी को?
0: हाँ, किस किस का नाम बताऊं बेटा। लेकिन छोड़ो, तुम क्या बता सकते हो ये बिशु पांडे का कौन सा मकान है?
1: बिशु पांडे?
0: हाँ हाँ, बिशु पांडे।
1: क्या काम करते हैं? मेरा मतलब है किस कार्यालय में?
0: तो क्या तुम बिशु पांडे को नहीं जानते?
1: अब इतने बड़े गांव में कौन किसको जान सकता है बाबा। किसी को जानने से फायदा भी क्या है? किनको फुर्सत है गांव भर के आदमी को जानते फिरे?
0: अरे वो तो भजन कीर्तन में डूबा रहने वाला व्यक्ति है।

क्या जमाना आ गया, किसी को किसी से मतलब नहीं। ये आवाज कहाँ से आ रही है?

0: हाँ हाँ अब तो समझ में आ रहा है, ये विशु पांडे की आवाज है। हाँ, ये विशु पांडे की ही आवाज है।
1: वही जुड़े जब प्रेम से,
0: ठीक उसी तरह का स्वर, बहुत दिनों के बाद फिर से पहचान में आ रहा है विशु पांडे।
2: इस समय इधर कौन आ रहा है? अरे अरे, ये तो अपना कैलाश चौधरी लगता है।
0: आप विशु पांडे तो नहीं?
2: और आप कैलाश चौधरी तो नहीं?
3: अरे अरे, तुमने ठीक ही पहचाना मित्र।
2: तुमने भी ठीक पहचाना मित्र। चौधरी,
0: हाँ,
2: तुम इतने सालों तक कहाँ वनवास में रहे?
0: हाँ,
2: गांव छोड़कर कैसे इतने सालों तक तुम्हें बाहर रह गया? जवानी में गए थे और बुढ़ापे में गांव लौटे हो।
3: अरे विशु, तुम भी तो बूढ़े हो गए हो, गांव में रहकर तुम ही कौन सा जवान बने रहे।
2: हाँ भाई, ठीक कहते हो।
3: सारा भारत घूम आया, लेकिन
0: अपने गांव जैसी हल माटी की सुगंध नहीं है।
2: अरे तो ये कहो न चौधरी, कि अपने गांव की मिट्टी खींच लाई है तुम्हें।
0: तुमने बिल्कुल ठीक कहा पांडे। वैसे भी हर आदमी की यही इच्छा होती है कि उसकी ठठरी उसके गांव के ही हवा पानी मिट्टी में समाए तो अच्छा।
2: ये तो तुमने ठीक ही कहा चौधरी, लेकिन अपना गांव थोड़े ही न रह गया है। नरक तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे कम भी नहीं रह गया है। अब ये गांव बदल रहा है चौधरी, बदल रहा है।
0: तुम्हारे कहने का कुछ मतलब नहीं समझा?
2: समझा भी नहीं सकूँगा। अच्छा, पहले ये बताओ कि गांव में अब स्थायी तौर पर रहने आए हो या कुछ दिन रहकर फिर वनवास लौट जाओगे? आधे सन्यासी तो हो ही गए हो, क्या पता कब पूरे सन्यासी बन जाओ।
3: नहीं विशु, नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला।
2: अच्छा।
3: हाँ, अच्छा ये बताओ, अपने बच्चू भैया का क्या हालचाल है?
2: बच्चू भैया?
3: हाँ बच्चू भैया।
2: चलो अपनी आँखों से देख लेना उनका हालचाल।
3: ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम?
2: अरे पहले चलो तो सही। अच्छा अब, अच्छा चौधरी ये बताओ कि तुम्हें वो वाला गाना याद है?
3: कौन कौन
2: वाला? वही वाला,
3: इमली।

0: बिल्कुल
1: हाँ
0: और कितनी देर लगेगी?
1: वो हरे रंग का मकान उन्हीं का है।
0: ओ अच्छा अच्छा वो मकान।
1: हाँ
0: लेकिन इतनी भीड़ क्यों लगी है इनके पास?
1: क्या बताऊं चौधरी,
0: क्या हुआ?
1: ये तो हर दूसरे दिन की कहानी है।
0: दूसरे दिन की कहानी?
1: वो कहते हैं ना,
0: हाँ।
1: जायदाद जितनी बड़ी समस्या भी।
0: हाँ भाई, कमोबेश यही

0: हाल तो सब जगह है।
1: अच्छा, ये यही बच्चू भैया है क्या?
2: अरे हाँ भाई, यही बच्चू भैया।
1: अच्छा, नमस्कार बच्चू भैया।
2: नमस्कार नमस्कार कैलाश। अरे तुम।
1: मैं
2: आप पहचाना भाई, आप पहचाना। अब तो नहीं ना जाओगे?
1: अरे अब तो गांव भी मुझे बाहर निकालेगा तो भी नहीं निकलूंगा। हाँ समझे बच्चू भैया। बच्चू भैया,
2: हाँ
1: बिशु बता रहा था कि आपका अपने गोतिया से विवाद चल रहा है।
2: हाँ चौधरी, तुम्हारी भाभी तो मुझे शादी के कुछ दिन बाद ही छोड़कर चली गई। उसके बाद मैंने शादी नहीं की, नहीं किसी बच्चे को गोद लिया। सोचा था मेरे भाई के बच्चे ही मेरे वारिस हो जाएंगे, लेकिन इन्हें तो जायदाद की ऐसी भूख जगी है कि मेरे मरने तक का भी इंतजार नहीं। इसी वजह से रोज कुछ न कुछ बखेड़ा होता रहता है। अब गांव में भी एकता नहीं है, सब एक दूसरे का फायदा उठाना चाहते हैं। अजब स्थिति हो गई है भाई।
3: कोई बात नहीं बच्चू भैया, सब ठीक हो जाएगा।
1: तो इसी स्थिति को बदलने के लिए अब हम लोगों को संघर्ष करना है। हम सबों की उम्र ही क्या बची है, बचे हुए समय में अगर हम एक गांव को भी गांव बना सके तो बहुत बड़ी बात होगी।
3: लेकिन ये संभव भी है क्या?
1: बिल्कुल संभव है।
3: गांव में कहीं मेल भी रह गया है, किसी टोले को किसी टोले से कोई मतलब नहीं।
1: सोचो विशु, ये कितनी खतरनाक स्थिति है।
2: ये तो मुझे भी लगता है कि हम लोगों से कहीं ना कहीं कोई बड़ी भूल हो गई। क्या गांव वालों से हमें मदद मिलेगी?
1: अवश्य मिलेगी। अगर किसी से नहीं भी मिली तो युवाओं का साथ लेंगे।
3: युवा?
1: हाँ।
3: अरे युवाओं से तो इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी।
1: अरे यही भूल है हम सबों की। जात पात धर्म की दीवारें तोड़ेंगे तो गांव शहर देश के युवा देश का नक्शा बदल रहे हैं। इस गांव का भाग्य भी बदलेगा तो यहां के युवाओं के हाथों ही। हम लोगों की भूमिका इतनी ही होगी कि उन्हें आशीर्वाद देते रहें।
2: चौधरी, ऐसा ही होगा। और हाँ, आज से ही हम सब इस काम पर लग जाते हैं।

0: जो गीत गा रहे हैं। बाबा बाबा आप कौन हैं और अकेले इस धूप में खंजड़ी बजाकर क्या गा रहे हैं?
1: पहले ये तो बताओ बेटी कि तुम कौन हो?
0: मैं? आप बाबू अखिलेश सिंह को तो जानते ही होंगे।
1: हाँ हाँ, अखिलेश, अरे वो तो मेरे बचपन का दोस्त है।
0: हाँ, मैं उन्हीं की बड़ी बेटी हूँ।
1: अच्छा।
0: उषा 10 साल से विदेश में थी, डॉक्टरी की पढ़ाई करने गई थी। पढ़ाई पूरी हो गई तो गांव लौट आई हूँ।
1: अच्छा, तो क्या अब यही रहोगी या फिर विदेश लौट जाओगी?
0: नहीं नहीं बाबा, अब ना विदेश जाऊंगी ना शहर, बस इसी गांव में रहकर जो हो सकेगा करूंगी। अरे आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा?
1: नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जिसको अपने देश, अपने गांव, अपनी माटी से प्यार होता है, उसे शहर में या विदेश में हीरे का खजाना भी मिल जाए तो अपनी जन्मडीह नहीं छोड़ता।
0: हाँ बाबा, आपकी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। बताइए ना आप हैं कौन?
1: मैं तुम्हारे ही गांव का कैलाश चौधरी हूँ। बहुत साल पहले ये गांव छोड़कर चला गया था।
0: अच्छा अच्छा, हाँ पिताजी ने कई बार आपकी बात की थी। कई बार आपके बारे में उनसे सुना है।
1: हाँ हाँ, सोचा था इतने सालों बाद गांव में सब कुछ बदला हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गांव बदला है, लोग तो अभी भी वहीं ठहरे हुए हैं जहाँ वह आज से 40 साल पहले थे। अब लोगों को अपने गांव से मतलब नहीं रह गया, सब अपने अपने सपने में लीन हैं। न इस गांव के पोखरों से उनका मतलब है, न बाग बगीचों से, न खेतों से, न हवा माटी से।
0: बाबा,
1: हाँ
0: आपकी बातों से लगता है आप मेरे काम में मेरी मदद कर सकते हैं।
1: मदद? किस काम के लिए?
0: आप यहाँ के पुराने ठाकुर गणपति को तो जानते ही होंगे ना?
1: हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारा बचपन साथ ही बीता है। उसके दादा ने इस गांव के लिए एक ग्राम पोखर दान दिया था।
0: हाँ हाँ,
1: जिसके कारण यहाँ खेती करना संभव हो पाया।
0: हाँ बाबा, वही ठाकुर गणपति जिस पोखर की आप बात कर रहे हैं, वो लगभग 100 साल पुराना तो होगा ही।
1: हाँ होगा ही।
0: अब उस पोखर की वजह से इस गांव में घमासान छिड़ा हुआ है।
1: अच्छा,
0: पोखर का इस गांव की समृद्धि में क्या योगदान है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है बाबा। लेकिन आज इसी पोखर की जमीन को मिट्टी से भरकर एक बड़ा कारखाना लगाने की तैयारी है।
1: कारखाना? मुझे थोड़ा ठीक ठीक बताओ ना।
0: बाबा, मैंने विदेश में रहकर पढ़ाई की है, वहीं मेरे साथ ठाकुर गणपति का बेटा किशोर सिंह भी पढ़ता था।
1: अच्छा।
0: उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वहां तो वो बड़ी बड़ी बातें करता था कि गांव जाकर पूरे गांव का नक्शा ही बदल देना है। वो अपने शहरी दोस्तों के साथ यहाँ एक कारखाना लगाना चाहता है।
1: अच्छा,
0: जिसके लिए जमीन का एक बड़ा टुकड़ा चाहिए उसे।
1: ओ।
0: अब देखिए ना, चूंकि ये पोखर उसके पूर्वजों ने इस गांव को दिया है।
1: हाँ।
0: तो अब वो इस पर अपना कानूनी हक जता रहा है। अब क्या बताऊं बाबा, पूरा गांव एक तरफ है और किशोर उसके पिताजी एक तरफ।
1: मामला तो गंभीर है।
0: हाँ, इसलिए हमने कुछ वकीलों से भी संपर्क किया है ताकि कोई कानूनी हल निकल सके।
1: देखो उषा बेटी, हमारे समय में तो सब कुछ गांव की पंचायत में ही मिलजुल कर हल हो जाता था। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन बस एक बात कहनी है।
0: हाँ हाँ, कहिए ना।
1: तुम इस समस्या के समाधान के लिए जो भी करना चाहो करो, लेकिन उससे पहले मुझे एक प्रयास करने दो। मेरा अब भी मानना है कि गांव के बदलते स्वरूप में अब भी गुंजाइश बाकी है, जिन्हें बस समझने की जरूरत है। बस तू मेरा साथ दो।
0: हाँ, क्यों नहीं, जहां इतने दिन रुकी हूं तो कुछ दिन और सही।
1: हाँ हाँ, चलो चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ।
0: हाँ, हाँ, हाँ, चलिए बाबा,
1: चलो
0: चलिए,
1: चला जाओ।

0: कहो।
1: क्या गांव वाले राजपोखर को गांव की संपत्ति बताने के लिए संगठित हो रहे हैं? क्या कहते हो? हाँ हाँ बोलो। हाँ मुझे भी लग रहा था कि इसमें उषा का ही हाथ होगा। और कौन? विशु पांडे, बच्चा सिंह, कैलाश चौधरी। हाँ हेलो, कहाँ देखा? राजपोखर के निकट। अरे राजपोखर हमारे पूर्वज का रहा है, जिस पर मेरा पुस्तैनी अधिकार बनता है। हाँ हाँ हाँ, अरे ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। ये काम सिर्फ 4-5 आदमी का बनाया हुआ खेल है, जिसका नेतृत्व 40 साल के बाद गांव में आए वृद्ध कैलाश चौधरी कर रहे हैं। मैं तो उनसे मिल भी चुका हूँ जब वो पहली बार लौटकर गांव आए थे और अपरिचितों की तरह गांव में भटक रहे थे। अगर उस दिन पता होता कि ये गांव आकर इस तरह आग लगाएंगे तो उसी दिन किसी और गांव का पता बता देता मैं इन्हें। ठीक है, तुम लोग वहीं डटे रहो, आगे जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा।
0: किससे बात कर रहे थे किशोर
1: जी? बेचू से।
0: इतनी रात को?
1: पिताजी बात ही कुछ ऐसी है, सारे गांव वाले मिलकर हम लोगों के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं।
0: क्या विद्रोह?
1: जी।
0: लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अच्छा किशोर।
1: जी पिताजी।
0: तुम जाकर आराम करो, मैं देखता हूँ अब आगे क्या करना है।
1: पिताजी आप भी सो जाइए, अब कल सुबह सोचते हैं इस बारे में।
0: ठीक है।

0: ये आपके शरीर से इतना खून क्यों बह रहा है? और आप कौन हैं? कौन हैं आप?
1: मैं इस गांव का ग्राम देवता हूँ।
0: ग्राम देवता?
1: शरीर से बहने वाला ये रक्त तुम मानवों द्वारा दिए गए जख्मों का है।
0: ग्राम देवता? मंदिर में तो आपकी ही मूर्ति है। हे ग्राम देवता, प्रणाम प्रणाम ग्राम देवता। आपकी ये हालत हमारे कारण से है, हमें माफ कर दीजिए ग्राम देवता। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा ग्राम देवता, वैसा ही होगा।
1: एक बात समझ लो, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तब तुम्हारा अस्तित्व ही कहाँ रहेगा?
0: हाँ, मैं समझ गया ग्राम देवता, सब कुछ समझ गया, आपकी बातों का मतलब भी समझ गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे ये गांव बदल जाए। बस बस बस आप हमें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए ग्राम देवता, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए।
1: ठीक है, मैं

0: सिर बहुत भारी लग रहा है। रात में कैसा सपना देखा, ग्राम देवता का वो जख्मी शरीर। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं आज ही उन लोगों से मिलकर सब ठीक कर दूंगा। लेकिन किशोर, किशोर को कैसे समझाऊं? किशोर से तो बात करनी ही होगी। किशोर, किशोर।
1: जी पिताजी।
0: जरा गाड़ी तो निकालो।
1: इतनी सुबह सुबह क्या हो गया पिताजी?
0: जो कहता हूँ बेटा उतना करो, बाकी बातें रास्ते में होंगी।
1: जी

0: बच्चा भाई, बच्चा भाई कहाँ हो? अरे भाई बाहर तो निकलो।
1: अरे ठाकुर, तुम इतनी सुबह सुबह, और ये साथ में तुम्हारा इंजीनियर बेटा भी है, वाह वाह।
0: वो बिशु पांडे कहाँ है? और शेख साहब, अरे भाई सभी गांव वालों को तो बुलाओ, कुछ कहना है उन लोगों से।
1: क्या हो गया ठाकुर, कौन सी बातें करनी है?
0: अरे बच्चा भाई, पहले सबको बुलाओ तो सही।
1: अभी किसी को भेजता हूँ। लगता है चौधरी, कल रात वाले दोनों प्लान काम कर गए। शेख साहब का ग्राम देवता बनकर गणपति ठाकुर से बात करना, और बेचू को दिखाकर पोखर के चारों तरफ इकट्ठा होकर नारेबाजी करना, दोनों तीर सही निशाने पर लगे हैं।
2: अरे अरे, सही कह रहे हो विशु, बस अब अपना मुंह बंद रखना।
1: हाँ चौधरी हाँ।
3: लेकिन लेकिन मुझे तो किशोर की चिंता है, कहीं वो मामला बिगाड़ ना दे।
4: लो, सब लोग आ गए।
3: अरे अरे, ये ठाकुर खड़ा क्यों हो गया?
0: सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझसे एक बड़ी गलती होने जा रही थी, लेकिन लेकिन मंदिर वाले ग्राम देवता की कृपा है मुझ पर कि कल रात उन्होंने साक्षात दर्शन दिए, उन्होंने मुझे सही राह दिखाई।
5: पिताजी, पिताजी पता नहीं क्यों मुझे इसमें सच्चाई नहीं लग रही।
0: किशोर,
5: कहीं वो आपका भ्रम तो नहीं?
0: किशोर, किशोर।

0: और मैं कह रहा हूं अगर एक शब्द भी तुमने इसके बाद बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
1: पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप?
0: अरे मैंने तुम्हें विदेश भेजा था पढ़ने के लिए ताकि गांव के बदलते स्वरूप को एक सही आकार दिया जा सके। अरे लेकिन तुमने तो गांव को ही बदलने की बात ठान ली। और मुझे देखो मैं भी तुम्हारे बहकावे में आ गया। अरे तुमसे अच्छी तो उषा बेटी है जो कम से कम गांव वालों के साथ तो खड़ी रही। बेटा अब भी समय है, तुम अपनी जिद छोड़ दो अपनी जिद, नहीं तो मैं कह रहा हूं अपने पूर्वजों की सारी संपत्ति गांव के नाम दान कर दूंगा।
2: वाह ठाकुर वाह, पोखर को बचाकर तुमने फिर से इस गांव को बचा लिया।
3: जहां तक बात किशोर की है तो उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो फिर से नई शुरुआत कर सके।
2: हाँ हाँ क्यों हाँ, नहीं हाँ। एक मौका तो किशोर को मिलना ही चाहिए। हाँ,
4: मिलना ही चाहिए। ठाकुर साहब एक मौका अवश्य दें आप।
5: हाँ चाचा जी, किशोर को माफ कर दीजिए।
6: पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। कैलाश चाचा, विशु चाचा, बच्चू चाचा, आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिए। उषा बहन मुझे माफ़ करना, मैं बस इस गांव का विकास करना चाहता था लेकिन मैं भूल गया था कि विकास का मतलब सिर्फ बदलाव करना ही नहीं है बल्कि वो बदलाव जिनके लिए किया जा रहा है उनको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ताल, तलैया, पोखर ये सभी गांव के अभिन्न अंग हैं। इनका अस्तित्व मिटाकर कारखाना, नहीं नहीं ऐसा तो अब मैं सोच भी नहीं सकता। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि बदलता गांव कैसा होना चाहिए। हाँ कैसा होना चाहिए बदलता गांव।
2: हाँ हाँ समझ गया।
3: तो विशु भैया
2: हाँ
3: हो जाए
2: गांव।

अभी आपने धनंजय मिश्र का लिखा नाटक सुना बदलता गांव। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय भूमिका सहित इस प्रकार है: कैलाश चौधरी, डॉक्टर शुभतोष बागची, विश्व पांडे की भूमिका में थे अरुण कुमार झा, ठाकुर गणपति डॉक्टर पवन कुमार, बच्चू सिंह संजय कुमार, किशोर की भूमिका में थे राजेश प्रियदर्शी, उषा, संगीता घोष और ग्राम देवता की भूमिका में थे दशरथ प्रसाद साहा। प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद सरशार अहमद, प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक थे अमित कुमार। यह नाटक आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति थी।

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अंगिका लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए गूंजे बिहार।

0: लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजित बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गुंजित बिहार, आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी गिरामी लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गुंजित बिहार।
1: श्रोताओं नमस्कार, लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गुंजे बिहार के आज के संक में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका ही दोस्त डॉक्टर विजय कुमार मिश्र और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं
2: सोनाली कर्मकार। नमस्कार।
1: हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, यानी अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा की बात करें तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में अद्वितीय है। और हमारे यहाँ लोकगीत, जो कि लोकगीत को आदि गीत, प्राचीन गीत कहा जाता है, जो कि लोक कंठों से प्रस्फुटित होते हैं, लोक अंचल में ये प्रयुक्त होते हैं और लोक की बोली, लोक की शब्द, लोक की भाषा, इसमें ही ये प्रयुक्त किया जाते हैं। अब इसमें भी रही बात है कि जीवन की अगर बात करें तो जीवन में जैसी कि लोक मान्यता है हमारी कि 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कारों में कई उपसंस्कार भी होते हैं, जिसमें जीवन की शुरुआत की संस्कार जो होती है उस अवसर पर गाए जाने वाले गीत को हम सोहर कहते हैं। और इस सोहर में जो हम कामना करते हैं और सोहर के माध्यम से जो भावाभिव्यक्ति होती है वो हमारे अंतर्मन में रचे बसे हुए उस आदर्श के प्रति ही होती है जो सर्वमान्य है और जिसके बारे में ये मानना है कि वो सर्वत्र विद्यमान भी है।

0: संस्कारों से बढ़कर आगे की ओर चलते हैं तो जीवन का क्रम जब आगे की ओर बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि कृषि का क्षेत्र अपना ये प्यारा देश भारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक कृषि प्रधान देश है, साथ ही साथ ग्राम प्रधान देश भी है और यहाँ की संस्कृति जो है वो ऋषि कृषि संस्कृति है और इस संस्कृति में भी इसका अपना एक अलग श्रृंगार है, अलग रूप है, क्योंकि षट ऋतुओं का हमारा ये प्यारा देश भारत और छह ऋतुओं का अपना एक अलग अलग आनंद है। लेकिन इसमें गर्मी की तीखी दोपहरिया क्या कहने
1: है ना? गर्मी का मौसम हो, दोपहर का समय और पीपल की छांव में बैठकर मंद मंद बयार हमें अद्भुत अनुभूति प्रदान करती है। शांत नदी की छल छल धारा, पीपल के पत्तों की हवा के साथ, सरसराहट के साथ एक अद्भुत संगीत में वातावरण पैदा करती है जो हमारे दिल में एक श्रृंगार, एक आंदोलन को जन्म देती है।

0: प्रायः गीतों की जब बात किया करते हैं तो उसमें खास तौर से अपने ग्राम्यांचल के लोकगीतों में एक चर्चा तो बड़ी ही प्रमुखता से आया करती है, वो होती है गोरिया की, पनिहारिन की, है ना। और सामूहिक रूप से पानी लेने के लिए, यानी कि जल को लेने के लिए, जल के तट पर या जल के स्रोत के तट पर जाना और उस अवसर पर गीतों के साथ उस ओर बढ़ना, जल को भरना और वापस लेकर आना, अपने आप में ये बहुत बड़ा श्रृंगार है। और जैसे कि हमने चर्चा की थी कि हमारे यहाँ हर अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते हैं, उसी कड़ी में एक कुछ इस प्रकार का भी गीत होता है जो ऐसे ही अवसरों पर गाया जाता है।
1: नदी का किनारा, शांत वातावरण, पत्तियों की सरसराहट और घड़े में पानी भरने की आवाज, जैसे शांत नदी को किसी ने छेड़ दिया हो, और एक अद्भुत संगीत का अनुभव तब होता है जब गोरिया छम छम पायल की आवाज के साथ नदी के किनारे पानी भरने जाती है।

आपस में जब नोक झोंक चलता है, विरह की बात हो या फिर प्रेम की बात हो, मगर नोक झोंक जब चलता है तो उसमें कई चीजें, कई शब्द ऐसे प्रयोग होते हैं जिसका अपना एक अलग श्रृंगार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मगर एक बात सदैव अंतर्मन में विद्यमान रहती है, वो होती है अलगाव की या फिर साथ की। इन दोनों में दगा देने की बात प्रायः आ जाती है और ये मनोहार भी होता है और श्रृंगार भी होता है कि अपेक्षा किया जाता है कि दगा हमसे कोई ना दे। और इसके बावजूद भी जब थोड़े बहुत अगर बात बढ़ती है तो उलहने ताने, हालांकि ये सब भी श्रृंगार है, उलहना भी देना ताना भी देना ये सब श्रृंगार है, मगर कई ऐसे अवसर आते हैं जबकि गीतों के माध्यम से और उन शब्द वाणों के माध्यम से अलग अलग प्रकार के उलहने और ताने दिए जाते हैं जो कुछ खट्टे मीठे अनुभव दे ही जाते हैं।

0: कल्पना और भावुकता ये सबों में होती है और गौरियाँ जब अकेले घर में रहती है तो कहीं ना कहीं उनका मन कल्पना में बह जाता है, चाहे उसके मन में कई तरह की भावनाएं अच्छी या बुरी क्यों ना आए। कभी वह खुश हो जाती है कुछ अच्छी बातों को सोचकर, कभी वह दुखी हो जाती है कुछ बातों को सोचकर। कल्पना से बाहर आती है, उसे एहसास होता है कि अभी तो वो खुशी आई ही नहीं है, और कभी कभी कुछ अच्छे पल की मन में लालच भी हो जाती है।
1: मन तो मन है ना, और मन के विचार अनंत हैं। मन बहुत ही चंचल है ऐसा माना जाता है, और क्षण भर में अभी और क्षण भर में कहाँ, ये कहना बड़ा ही मुश्किल सा होता है। मगर सुख क्षण की कामना और सुख क्षण की यादें, साथ ही साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो कि मन में उमड़ती घुमड़ती है, तो ये हमें ललचाती भी है, बहलाती भी है, कभी हमें आसमान की ऊंचाइयों को ले जाती है तो कभी भवसागर के गहरे गर्त तक भी पहुंचाती है।

0: तो श्रोता भाइयों बहनों, लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गुंजे बिहार के आज के इस अंक को अब यही विराम देते हैं। आज के इस कार्यक्रम से अपने इस दोस्त डॉक्टर विजय कुमार मिश्र को और साथी
1: सोनाली कर्मकार को
0: अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: लोक संगीत, मिट्टी की खुशबू, श्रम की सुगंध, इसी से सराबोर है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुंजित बिहार। बिहार की लोक संस्कृति का संवाहक गुंजित बिहार आकाशवाणी भागलपुर से प्रत्येक मंगलवार रात 10 बजे नामी ग्रामी लोक गायकों की मधुर गायकी के रस में आकाशवाणी भागलपुर का प्यार गुंजे बिहार।
1: आप सुन रहे थे अंगिका लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम गुंजे बिहार, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। रात्रि के 10:30 हुए हैं। भावों पर आधारित फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए भावगीत कार्यक्रम में। दोस्तों, मोहब्बत, जी हाँ, मोहब्बत, इश्क, प्यार, लव, ये क्या है? कभी हमने गौर से सोचा है? हम उस इंसान को अपना दिल दे बैठते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमारे दिल को अच्छा लगता है, हमारे रूह में उतर जाता है। हम चाहते हैं कि अपनी सारी ज़िंदगी इस इंसान के साथ गुजार दें, वो मेरा खूबसूरत हम सफ़र बन जाए और हम साथ साथ ज़िंदगी गुजारें। क्या हमेशा ऐसा होता है? हम जिसे दिलो जान से चाहते हैं, क्या वो भी हमें दिलो जान से चाहता है? चाहता तो है, तभी तो हम अपना दिल उस पर निछावर कर देते हैं। क्या करें, दिल के हाथों जो मजबूर हो जाते हैं। हम एक पल के लिए भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमें लगता है दिन रात सुबह शाम हर वक्त हर लम्हा उसके साथ ज़िंदगी गुजारें। और वाकई दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है जब हम अपने आइडियल, जी हाँ, जिसे हमने अपना सब कुछ समझ रखा होता है, यूँ कहें कि वो मेरा खुदा हो जाता है और हम उसकी बंदगी करने लगते हैं। इसे ही तो सच्ची मोहब्बत कहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा दोस्त हमसे खफा हो जाता है, और जब खफा हो जाता है तो हमारा दिल किस तरह बेचैन हो जाता है कि हम बयान नहीं कर सकते। अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दें, अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है।

दिल बड़ा ही नाजुक शय है। जी हाँ, छोटी से छोटी बात पे ये दर्द सा महसूस करने लगता है, तड़पता है, रोता है, बिलखता है। भले ही इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लेकिन महसूस तो ज़रूर करते हैं। वक्ती तौर पर हम कभी कभी अपने हमसफ़र से बदगुमान हो जाते हैं। वो चाहत, वो प्यार, वो वफा हमें नहीं मिलती है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। एक ईमानदार मोहब्बत, एक ईमानदार वफा, एक ईमानदार रिश्ता जिसे हम जीना चाहते हैं, जब वो हमें मुयस्सर नहीं होता तो हम तो टूट जाते हैं। लेकिन उस वक्त जब कोई मेरा सच्चा साथी मेरे हाथ को थामने के लिए आगे आता है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। वही तो सच्चा साथी होता है, उसे ही तो हम अपना सब कुछ मान बैठते हैं। ये वफादारी का रिश्ता हर किसी को नसीब हो और हर कोई अपने डूबते हुए किश्ती का सहारा एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहता है।

एक सच्चा दोस्त हर किसी को मिले, ये दिल की दुआ है। साथ में मुझे भी मेरा प्यारा वफादार दोस्त मिले, वो दोस्त जिसके साथ सारी जिंदगी सारी उम्र गुजार दें। अगर मैं देखूं तो उसकी आंखों से देखूं, अगर मैं सोचूं तो उसकी तरह सोचूं, हमारे ख्यालात एक हों, हमारे जज्बात एक हों, हमारे एहसासात भी एक हों। हमारी सोच जब हमसे जुदा होने लगती है, मुनफरिद होने लगती है, अलग अलग होने लगती है, तब हमारे बीच में दरार आने लगती है। हम सारे कस्में जो एक साथ निभाने के खाए थे वो भूलने लगते हैं, वो वफादारी की बातें जो एक दूसरे के साथ उम्र गुजारने पे सोचा करते थे वो कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर सब कुछ बिखर जाता है। हम अपने तकदीर को कोसने लगते हैं, हमारे नफ्सियात हमसे अलग अलग तरह के सवालात करने लगते हैं, ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या कर दिया। सब कुछ एक काफूर हो जाता है, यानी जो भी हमने कसमें वादे वफा खाई थी वो सब कुछ चूर चकना चूर हो जाता है। लगता है कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है और हम कितने मजबूर हो गए हैं।

जुदाइयों के ज़ख्म दर्दे ज़िंदगी ने भर दिए, जुदाइयों के ज़ख्म दर्दे ज़िंदगी ने भर दिए। तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया। अब क्या बोलें, जब हम उदास हो जाते हैं, हमारा हमसफ़र हमसे बिछड़ जाता है, तब हम अपनी बेबसी किसी को सुना नहीं सकते हैं। दिल ही दिल में घुटते रहते हैं वो आंसू, जो किसी को नज़र नहीं आता उसे हम जज्ब कर लेते

ऐसा क्या हो गया हमारे साथ, हमारी तकदीर के साथ कि वो हमसे बिछड़ गया। वो मोहब्बत जिसमें हमें वफा ना मिली, धोखा मिला, जहां हम ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के हवाले कर चुके थे, वो एक ख्वाब बन कर रह गया। अब हम किसी को क्या दोष दें जब हमने अपनी मोहब्बत को खुदा का दर्जा दे दिया, तो हम तो शिकवा भी खुदाई से करेंगे ना।

क्या बताएं इस ज़िंदगी के साथ क्या क्या ना हुआ। अब किसके नसीब में क्या है ये तो मुकद्दर की बात है, किसे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। हम सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हमारे साथ वैसा कुछ होता नहीं है। अगर हमारी सोच हमारे हिसाब से होने लगे तो शायद हम सब कुछ पा लें, लेकिन ये तो किसी और के हवाले।

होता है, एक तरफा प्यार बेहतर नहीं होता। प्यार तो वो होता है जब दो दिल एक साथ धड़के, एक तरह की सोचे। लेकिन जब हम आपस में ही उलझ जाते हैं, वो मोहब्बत जिसे हम खुशी खुशी अपनाना चाहते हैं वो कड़वाहट में बदल जाती है। तो ऐसे में अगर खुशी भी मिलती है तो वो भी मुकम्मल नहीं मिलती। अब तो खुशी का गम है न गम की खुशी मुझे, अब तो खुशी का गम है न गम की खुशी मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत ज़िंदगी मुझे।

आज के भावगीत कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीतों को शामिल किया गया उनके नाम हैं अभिमान, पूरब और पश्चिम, उपकार, जंजीर और मेरे हुजूर। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, मुकेश। ग्यारह बजने को हैं, अब आप सुनिए दिल्ली से समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में, और भावगीत से हमें अनुमति दीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइज

0: संरक्षण के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
0: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल
0: परिणाम लक्षी कार्यवाही
2: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। सुबह 5:48 पर हम फिर हाजिर होंगे। अभी हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।